एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948, भद्रा माह की तिथि 1, तदनुसार 23 अगस्त ईस्वी सन 2026।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती किरंगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री सिंह ने CBDT बेलापुर स्थित कपड़ा पुनर्चक्रण सुविधा TRF का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रतिमाह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसीलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को नवी मुंबई नगर निगम के साथ हुए समझौते के समान अन्य नगर निगमों के साथ भी समझौते करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा AIAPGET के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। NTA ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मेसर्स एडुकेटिव का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 उम्मीदवार परीक्षा पूरी नहीं कर सके। NTA ने सूचित किया कि प्रभावित छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर में आयोजित की जाएगी। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी BYC ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे साकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित उदारा शक्ति 2026 अभियान शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वेगनर हॉकी स्टेडियम

0: Pakistan. The contingent includes 265 male and 227 women athletes, with athletics accounting for the largest share of 73 participants. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कागार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानव उसकी प्रत्यंचा है और शम, तम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज वसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हमारे आज के कलाकार थे श्रीकांत परगांवकर। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:20 हो रहे हैं। वक्त हो चला है भक्ति गीतों के कार्यक्रम समर्पण का। आइए आरंभ करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। अब से कुछ देर में आपको सुनवाएंगे आज का कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, लीजिए पेश है आज का कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आवाज़ होगी मृदुला भट्टाचार्य की। 7 से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम जोहार चाईबासा। 8 का वक्त होगा समाचार प्रभात का। 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और 8:30 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे। 8:40 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हो लोकगीत। नौ बजे का वक्त कार्यक्रम विविधा का होगा। इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे बरसात के मौसम में अपना ख्याल आप कैसे रख सकते हैं इस विषय पर। 9:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम रसरंजन। 10 का वक्त होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 10:30 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। हमारी आज की संध्या सभा हम आरंभ करेंगे संध्या के 5:05 पर और सबसे पहले हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम जय भारती। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। 6 सबसे पहले आपको सुनवाएंगे मुख्य समाचार और 6:02 पर आरंभ करेंगे कार्यक्रम हो अकड़ा। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। 6:55 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार। उसके तुरंत बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम जिले में आजकल। सात बजकर 7:15 का वक्त आपके चहेते कार्यक्रम आपकी पसंद का होगा। 8 से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा में। 8:45 पर सुनवाएंगे समाचार संध्या। 9 से आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 9:15 से हम आरंभ करेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। 10 का वक्त कार्यक्रम महफिल का होगा। 10:30 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम सुरों के रंग। 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 का वक्त होगा अंग्रेजी समाचार का। 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो में 6:45 हो चुके हैं। आइए आरंभ करते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आज मृदुला भट्टाचार्य को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये चायवासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम जोहार चायवासा। इस कार्यक्रम का सबसे पहला गाना आइए सुनते हैं आशा भोंसले की आवाज़ में फिल्म खूबसूरत से।

कार्यक्रम जोहार चाईबासा में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ग्रहण फिल्म का ये गाना। आवाज़ें हैं आशा भोसले और जॉली मुखर्जी की।

वाणी जयराम की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गुड्डी का गाना। अब आपको सुनवा रहे हैं ये देशभक्ति गीत पूरब और पश्चिम फिल्म से। आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा। इस कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं आशा फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

0: story, but everybody will sing with me.
1: Okay.
0: Ready?

अभी आप सुन रहे थे आखिरी रास्ता फिल्म का गाना, आवाज़ें मोहम्मद अजीज़ और एस जानकी की थी। अब आइए सुनते हैं आर्या पार फिल्म का ये गाना, साधना सरगम और अभिजीत की आवाज़ों में।

प्यार किए जाए, इस फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम जोहार चायबासा हम यही समाप्त कर रहे हैं। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। अब से कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी

0: को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच, एचआईएसटी और आईपीटीवी सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
3: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि AI दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और

0: सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
1: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यास से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने 6ठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में NC सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिन भर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है।

0: समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत US संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमेरिका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब US और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा, 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honour and protection of historic legacy of Vande Mataram. Centre notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS sports ministers meeting at Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And in wrestling, Mansi Lathar wins silver medal at Under-20 World Championships in Slovakia. Tanvi and Komal claim bronze medals. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the Bharatiya Janata Party at its headquarters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said that organizational meetings are all about new ideas and perspectives.

0: Indian women wrestlers added three more medals to the country's tally at the Under-20 World Championships in Slovakia, with Mansi Latha winning silver and Tanvi Gundesh Madgum and Komal securing bronze medals. In the 68-kilogram final, Mansi was edged 1-2 by China's Qinling Song in a closely contested bout, settling for the silver medal. India added two medals in the bronze medal playoffs. Tanvi defeated Canada's Agnia Kraskova 10-4 in the 57-kilogram category, while Komal overcame Hungary's Eda Balaz 5-2 in the 59-kilogram division to claim bronze. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka will begin today in Colombo. The match will start at 10 a.m. Indian Standard Time. India won the first test by 165 runs and currently lead the series 1-0. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thank you, Pramod. BJP backs Vande Mataram's legacy, headlines The Pioneer, while Hindustan Times headlines, BJP plans drive targets Congress in Vande Mataram resolution. The Asian Age headlines, BJP will weaponize Vande Mataram to blunt opposition attack, woo Gen Z. Almost all leading newspapers carry on the front page the story of the first meeting of the newly appointed office bearers of the BJP. The Tribune headlines, BJP forms special team for Gen Z outreach, Naveen Smriti key faces. While The Hindu says, it's about ideas, perspectives, says Modi after team Naveen meet. And finally, a story in the Sunday Tribune says, a Kangra girl and her father aced the LLB exam, securing first and third ranks respectively. Anshika Rana topped, while her father Praveen Rana secured third rank. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at the party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honour and protection of historic legacy of Vande Mataram. Centre notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS sports ministers meeting in Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली पहले मुख्य समाचार केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने खरीफ और रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की समीक्षा की कहा किसानों को उर्वरकों की निबार्ध आपूर्ति सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता फॉर्म में विसंगतियों की जांच के दिए निर्देश परिवार के सदस्यों की सुनवाई एक साथ होगी नाम जुड़वाने और सुधारने का आज अंतिम मौका रांची में पुतला दहन और मारपीट मामले में पुलिस कार्रवाई तेज आंदोलनकारी छात्र छात्राओं को डिटेन करने पर गरमाई राजनीति नेता प्रतिपक्ष ने विरोध की आवाज दबाने का लगाया आरोप झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार बने अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर राहुल गुप्ता ने दर्ज की जीत और झारखंड में अगले चार दिन तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट और अब समाचार विस्तार से केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उर्वरक विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उर्वरकों की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निरंतर निर्बाध आपूर्ति और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एनुमरेशन फॉर्म के साथ जमा की गई दस्तावेजों से मिली विसंगतियों की गहन जांच के निर्देश ईआरओ एईआरओ को दिए हैं उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले का नियमानुसार निष्पक्षता से निष्पादन किया जाए श्री कुमार ने धनबाद, जामताड़ा और पाकुड़ के विभिन्न मतदान

0: मतदान केंद्रों के भौतिक निरीक्षण भी किए। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि एक माता पिता और उनके बेटे बेटी से जुड़े मामलों की सुनवाई यथासंभव एक साथ की जाए। इससे आयु, पारिवारिक संबंध, नागरिकता और दस्तावेजों का समग्र मिलान किया जा सकेगा। रांची में पुतला दहन और मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं आंदोलनकारी छात्र छात्राओं को डिटेन करने पर राजनीति भी गर्मा गई है। झड़प मामले में पुलिस छात्र नेता अमीषा प्रसाद को कल पूछताछ के लिए थाने लेकर पहुंची, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और मेयर रोशनी खलखो भी थाना पहुंचे। उन्होंने हेमंत सरकार पर विरोध की आवाज दबाने का आरोप लगाया।
1: झारखंड सरकार की पुलिस प्रशासन की ये गुंडागर्दी है। बच्ची को जिस ढंग से उठा के ले गया तो ये साफ समझ में आता है कि एक प्रकार से टॉर्चर करना, ताकि सरकार के विरोध अगर कोई भी आवाज उठाएंगे उस आवाज को दबाने की ये कोशिश कर रही है। ये सरकार को ये पता नहीं है कि आप जितनी भी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे आवाज उतनी ही मुखर होगी।
0: इधर सदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज कुलदीप कुमार ने इस मामले में कहा कि सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के संबंध में अमीषा प्रसाद के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए हैं। इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए लाया गया।
2: सदर थाना कांड क्षेत्र 286-26 में जो कि सैमफोर्ड हॉस्पिटल में तोड़फोड़ से संबंधित मामला है, इसमें जो है दो मामला इन पर दर्ज है, उसको पूछताछ के लिए लाया गया है। और ये जो है स्टूडेंट नहीं है, ये एनजीओ चलाती हैं और उसी क्रम में जो है सो एनजीओ के काम में ही वहां गई थी।
0: इधर छात्र आंदोलन पर सरकार की कार्रवाई पर भाजपा के आरोपों पर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पलटवार किया है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर छात्र आंदोलन को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगाया।
3: तो इन्हें लग रहा है कि अब तो इन्हें एक हथियार मिला था, मुद्दा मिला था कि छात्रों के जो अभी अपना भविष्य संवारने के लिए भी निकले हैं उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जाए और अपनी राजनीतिक रोटी सेक की जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो वैसे लोग जो इस आंदोलन की आड़ में छात्रों को ब्लैकमेल कर रहे थे।
0: हजारीबाग में पुलिस के खिलाफ छात्रों ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज किया है। छात्रों ने पुलिस कर्मियों को गुलाब फूल और कलम उपहार स्वरूप दिया। दरअसल हजारीबाग में शुक्रवार को छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज पुलिस ने किया था, जिसमें कई छात्र चोटिल भी हो गए थे। घटना को लेकर लगभग 700 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे वापस लेने की मांग छात्र कर रहे हैं।
4: झारखंड में तमाम जगहों पर जेएमएम के कार्यकर्ता और जिला प्रशासन के द्वारा निहत्थे छात्रों पर जिस प्रकार लाठी चार्ज किया गया है, जिस प्रकार छात्रों को दहाड़ मारा गया है, उसमें हम लोग जो है कि अभी मौन यात्रा निकाल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यह संदेश रहेगा कि जो जिला प्रशासन या जो लोग हम छात्रों को मारे हैं उनको हम लोग एक कलम दे करके और पुष्पगुच्छ दे करके एक संदेश देंगे कि चाहे आप लाठी बरसाए, गोली बरसाए, लेकिन छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा।
0: रांची नगर निगम ने विमेंस कॉलेज, साइंस ब्लॉक मार्ग, अल्बर्ट एका चौक और वार्ड 6 के बांधगाड़ी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान में 15 अस्थायी संरचनाओं, शास्त्री मार्केट के दो बड़े काउंटरों और सरकारी जमीन पर बनी दो स्थायी दुकानों को हटाकर सामग्री जब्त की गई, जिससे शैक्षणिक संस्थानों के पास जाम और आवागमन की समस्या कम हुई। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार, एक सैंडल, ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के वर्ष 2026-28 के चुनाव में पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर ली। उन्होंने एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष ऋतु कुमार को 84 वोट से हराया। उपाध्यक्ष पद पर राहुल गुप्ता 580 वोट हासिल कर विजयी हुए। आज गवर्निंग काउंसिल के 9 पदों के लिए मतगणना होगी।
5: हाईकोर्ट में जो वकीलों में एकता की कमी हुई है उसे वापस लाना है और बार एंड बेंच रिलेशनशिप जो है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। मैं समझता हूँ कि मेरे अध्यक्ष पद में आने के बाद सारी चीजें सुचारू होंगी और

0: जो भी समस्या है छोटी बड़ी उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।
1: रांची में JFDCL के मीट द मेंटर कार्यक्रम में मशहूर फिल्म एडिटर असीम सिन्हा ने कहा कि झारखंड के स्थानीय सिनेमा में ग्लोबल पहचान बनाने की पूरी संभावना है, जिसके लिए गांव-गांव में सिनेमा कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने क्षेत्रीय कलाकारों को अवसर देने, सीट फंडिंग और फिल्म मूल्यांकन के लिए मेंटरिंग सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया। देवघर राजकीय श्रावणी मेला को लेकर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर की संयुक्त अध्यक्षता में साप्ताहिक प्रेसवार्ता हुई। उपायुक्त ने बताया कि 30 जुलाई से 21 अगस्त तक 51,12,531 श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण किया। अंतिम सोमवारी को लेकर प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। झारखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 26 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहने के साथ राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या मेघ गर्जन की प्रबल संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रामगढ़ में हादसा और छात्रों के आंदोलन से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, गिद्दी में राहुल दुबे गैंग के 2 गुर्गे पुलिस मुठभेड़ में घायल, 1 फरार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पुतला दहन विवाद, रांची सहित 3 शहरों में 1,000 लोगों पर केस। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, सर्दी जुकाम की एक दवा का फॉर्मूला किया प्रतिबंधित। दैनिक जागरण लिखता है, पतरातू की सीमेंट फैक्ट्री के टरबाइन में ब्लास्ट, 3 अभियंताओं की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने खरीफ और रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की समीक्षा की, कहा किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता फॉर्म में विसंगतियों की जांच के दिए निर्देश, परिवार के सदस्यों की सुनवाई एक साथ होगी, नाम जुड़वाने और सुधारने का आज अंतिम मौका। रांची में पुतला दहन और मारपीट मामले में पुलिस कार्रवाई तेज, आंदोलनकारी छात्र छात्राओं को डिटेन करने पर गरमाई राजनीति, नेता प्रतिपक्ष ने विरोध की आवाज दबाने का लगाया आरोप। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव, पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार बने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पर राहुल गुप्ता ने दर्ज की जीत। झारखंड में अगले 4 दिन तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 हो रहे हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम माटी की महक का। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हो लोकगीत, और हमारे आज के कलाकार हैं बाबूराम सोय और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी की महक। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विविधा।

0: आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। सबसे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम करेंगे चर्चा बारिश में बच्चों का ख्याल कैसे रखें इस विषय पर। साथ ही आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, बारिश में त्वचा और बालों का ख्याल कैसे रखना चाहिए इस विषय पर। भेंट वार्ताकार होंगी कमलेश्वरी दास और भेंटकर्ता होंगी राधा रानी डे। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम और सबसे पहले करते हैं बात बारिश के मौसम में छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है जिससे उन्हें इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। उन्हें स्वस्थ रखने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। सबसे पहला है आपको उनके खाने पीने पर बहुत ध्यान देना होगा। आप बच्चों को जब भी दें उबालकर ठंडा किया हुआ पानी दें, उन्हें ताज़ा खाना ही खिलाएं, ताज़ा बनाकर गरम खाना आप दें उन्हें और उन्हें बरसात के समय बासी खाने से बचाएं। बाहर का खाना जितना हो सके उतना आप बंद करें क्योंकि वो खाना अधिकतर खुला हुआ होता है जिससे उस पर कीटाणुओं के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर बच्चा बहुत छोटा है और ब्रेस्ट फीडिंग पर है तो ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवाएं, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं, हल्के कपड़े पहनाएं लेकिन कम से कम आप इस बात का ध्यान रखें कि वो पूरे बाजू के हों जिससे वो मच्छर से बच सकें। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। घर में या घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। अगर आप अपने छत पर बारिश के बाद पानी आपके जमा होता है तो आप उसे भी हटाएं क्योंकि जमा पानी में मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। साफ सफाई यानी कि पर्सनल हाइजीन का आपको बहुत ध्यान रखना होगा श्रोताओं। जैसे बच्चों को आपको सिखाना होगा कि हैंड वॉश कुछ भी खाने से पहले और टॉयलेट के बाद बच्चों के हाथ साबुन से अच्छे से धुलवाएं। बच्चों को हमेशा अच्छे से सूखे और साफ कपड़े ही पहनाएं। नमी वाले कपड़ों से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है श्रोताओं, हम कपड़े सुखाते हैं और हमें लगता है कि वो सूख गए हैं लेकिन जब उसमें नमी होती है वैसे कपड़े आप बच्चों को ना पहनाएं क्योंकि वैसे कपड़ों से शरीर में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर बच्चा बाहर से भीग कर आए तो तुरंत उसके कपड़े और जूते बदलें और शरीर को अच्छे से पोंछ दें। घर का माहौल सूखा रखें, कमरों में सीलन ना आने दें। ज़रूरत हो तो नीम या धूप का धुआं करें जिससे कीड़े मकोड़े भागेंगे। बच्चे के सारे वैक्सीनेशंस टीके आप ज़रूर लगवाएं, खासकर फ्लू वैक्सीन्स का आप खासकर ध्यान रखें। अब इन सारे सावधानियों को बरतने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चा बीमार है, उसके क्या लक्षण हैं और आपको कब बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अगर बच्चे को तेज़ बुखार है, पेट दर्द है, उल्टियां हो रही है, लूज मोशन यानी कि दस्त हो रहे हैं, खांसी जुकाम हो तो घर पर इलाज करने के बजाय आप उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। घरेलू नुस्खे आप चाहे जितने भी आजमा लें लेकिन उसके साथ आप डॉक्टर के पास बच्चे को ज़रूर ले जाएं। याद रहे किसी भी तरीके का रिस्क आप ना लें जिससे बच्चे की तबीयत और बिगड़ जाए। अब आइए सुनते हैं कि बारिश के मौसम में हम त्वचा और बालों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। भेंट वार्ताकार हैं कमलेश्वरी दास और भेंट करता है राधा रानी डे।
1: बहनों, आज हम अपने स्टूडियो में सौंदर्य विशेषज्ञ श्रीमती कमलेश्वरी दास को आमंत्रित किए हैं। इनसे हम बातें करेंगे बरसात के दिनों में त्वचा और बालों की देखरेख कैसे करें। तो कमलेश्वरी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले हम त्वचा से लेते हैं, तो त्वचा विशेष करके चेहरे की देखरेख कमलेश्वरी जी हम किस तरह से करें?
2: चेहरे की देखरेख के लिए बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि बारिश में कोई उतना ज़्यादा चेहरा का देखभाल नहीं करने के कारण चेहरा और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जैसे आप ग्रामीण महिलाओं के लिए आप घर में जैसा खीरा दही ये सब तो घर में सभी के घरों में मिल ही जाता है, तो आप खीरे को कद्दूकस करके दही में मिला के आप चेहरे में लगा सकती है। और दूसरा
3: इसे लगाकर हम कितने देर तक, कितना देर तक रखें इसे लगाकर?
2: इसे लगा के आप 15 मिनट रखिए, उसके बाद आप साफ कर दीजिए,
3: साफ पानी से धो लेना।
2: हाँ,
3: है
2: साफ पानी से धो लीजिए।
3: अच्छा अच्छा।
2: और जैसे दूसरा आप पिस्ता बादाम को पीस करके आप फेस पे लगाइए, उसको भी 10-15 मिनट रखिए, उस वो भी आपका घरेलू मतलब मिल ही जाएगा बादाम। और फिर जैसे जौ का आटा, संतरे का छिलका, ये नींबू के साथ मिला के आप लगा सकती है। इस तरह से आप मतलब अपने बारिश के दिनों में ऑयली जो फेस हो जाता है
3: तैलीय त्वचा के लिए, हाँ
2: हाँ, उसमें आप ये चीज लगाइएगा तो आपका मतलब ऑयलीपन कम हो जाएगा,
3: तैलीयपन जो है थोड़ा बहुत कम हो,
2: ऑयलीपन कम हो जाएगा और माने चेहरा भी साफ रहेगा। और कोई माने बाहर का जैसे क्रीम हुआ ये तो बारिश के दिनों में बिल्कुल ही मतलब
3: नहीं लगाना है।
2: हाँ, अच्छा, लगाना चाहिए लेकिन नहीं भी लगाने से चलेगा क्योंकि इतना ऑयल हो जाता है कि क्रीम का जरूरत ही नहीं पड़ता।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो ऑयली त्वचा के लिए, तो हम रूखा जो त्वचा होता है उसके लिए हम किस तरह से देख रेख करेंगे?
2: रूखा त्वचा जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाने के कारण माने आपका ये फेस मतलब पूरा ये हो जाता है, तो रूखा जैसे स्क्रब कर सकते हैं आप, स्क्रब जैसे घर पे भी बना सकते हैं या तो फिर बाजार से खरीद के अपना यूज कर सकते हैं। घर पे बनाने के लिए जैसे संतरा का छिलका हुआ, उसके बाद जौ का आटा, ये सब मिला के आप स्क्रब के रूप में आप यूज कर सकते हैं।
3: अच्छा।
2: तो उससे क्या होता है आपका माने पूरा ये हो जाएगा।
3: अच्छा, जौ के आटा के साथ हम क्या मिक्स करें?
2: जौ के आटा के साथ आप संतरे का छिलका, जौ का आटा और ऐसे पानी भी यूज कर सकते हैं या फिर आपके पास गुलाब जल हो तो वो भी चलेगा,
3: उसके साथ मिक्स करके पेस्ट जस्ट आप कहेंगे बना करके चेहरे में लगाना।
2: हाँ,
3: है उसे भी 10-15 मिनट लगा के।
2: हाँ, 10-15 मिनट फेस में मतलब उसको ये करना है जैसे साबुन लगाते हैं उस तरह से लगा के आप छोड़ दीजिए,
3: छोड़ देना। अच्छा,
2: उसके बाद फेस को धो लीजिए
3: साफ पानी।
2: हाँ,
3: से पानी। अच्छा, ऐसा है जौ की आटा, यानी आटा तो बहनों को, ग्रामीण बहनों को मिल ही जाएगा, और जहाँ तक संतरे की बात हो, यदि संतरा ना मिले तो उसके जगह कोई दूसरा चीज क्या इस्तेमाल में लाया जा सकता है?
2: संतरा, अगर संतरा का छिलका अगर नहीं मिलता है तो जौ का आटा केवल चल जाएगा उसमें। हाँ, पानी मिला लीजिए या फिर जैसे दूध, अगर किसी के यहाँ दूध नहीं है तो फिर आप पानी से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दूध और गुलाब जल से ज्यादा मतलब अच्छा होता
3: रहता है। हाँ। यानी आप कहेंगे कि जो जौ का जो आटा है वो फायदेमंद है, उसे यदि हम पानी के साथ, यदि गुलाब जल या दूध नहीं रहा, संतरे का छिलका नहीं रहा, तो हम ये आटा भी हमारे लिए उपयोगी है, इससे भी हम त्वचा को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं।
2: साफ कर सकते हैं।
3: अच्छा, वैसे और क्या बताएंगे, और किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, कौन कौन सा चीज?
2: जैसे आपका अभी अनानास हुआ, अभी बारिश के दिनों में अनानास बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो अनानास के माने अनानास को कद्दूकस करके आप उसको भी लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं।
3: अच्छा,
2: बहुत
3: अच्छा।
2: सारा चीज।
3: हाँ, पपीता लगा। तो देखिए गांव घर में मिल जाता।
2: हाँ,
3: है ना।
2: हाँ,
3: तो पपीता को हम किस तरह से चेहरे में
2: लगाएं? पपीता के छिलके को निकाल दीजिए, पपीता जो अंदर में रहेगा
3: क्या, कच्चा हुआ ना, पका?
2: नहीं, पका हुआ पपीता।
3: अच्छा, हाँ।
2: पका पपीता को आप उसको थोड़ा सा कद्दूकस कर लीजिए, मतलब हल्का सा पीस लीजिए या फिर कोई ये में हल्का छोटा छोटा,
3: यानी आप कहेंगे कि वो पका जो ना अधिक पका हो।
2: हाँ,
3: ना ही कच्चा।
2: हाँ,
3: हो, जो मध्यम।
2: हाँ,
3: स्थिति में हो। अच्छा,
2: उसको आप लगा सकते हैं, उससे भी बहुत मतलब फायदा करता है पपीता।
3: उसका रस को।
2: हाँ, रस लगाइए।
3: अच्छा,
2: फिर जैसे खीरा ये सब तो प्रायः मिल ही जाता है सबके यहाँ, फिर गांव में तो सब मिल प्रायः मिलता है।
3: खीरा तो मिल ही जाता है।
2: ये सब सारा चीज आप लगा सकते हैं घर
3: इन
2: में
3: दिनों, बरसात के दिनों में,
2: इन
3: सब चीजों से बहने अपनी त्वचा को साफ रख सकती
2: हैं।
3: अच्छा, देखेंगे बरसात के दिनों में पिंपल्स जो है मुहासे, जिसको
2: मुहासे
3: बहुत ज्यादा निकल आते हैं,
2: बहुत ज्यादा,
3: तो इसकी रोकथाम के लिए हम क्या करें?
2: जैसे अभी ऑयल जो हो जाता है, ऑयल के कारण माने मुहासा ज्यादा होता है, तो ये सब जो हम जितना अभी पहले आपको बताएं, ये सब चीज आप यूज करिए, आपको माने उससे ऑयलीपन जो दूर होगा, ऑयलीपन जहां नहीं हुआ तो मुहासा भी नहीं होगा,
3: खत्म
2: हो जाएगा।
3: अच्छा।
2: मुहासा अगर ऑयल हो जाएगा फेस तो मुहासा होना है
3: जरूरी
2: जाता है।
3: अच्छा, अच्छा। तो यानी आप कहना चाहेंगे कि त्वचा को हमेशा साफ रखे
2: और है? जिसका मतलब जैसे वॉयली ज्यादा हो जाता है उसको हमेशा 10-15 मिनट में चेहरा अपना धोना चाहिए,
3: धोना जरूरी हो जाए, ठंडे साफ और ठंडे पानी से चेहरे को साफ करते रहे। अच्छा, ये तो रही त्वचा की बातें, अब देखेंगे इस मौसम में बालों पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है ना।
2: हाँ,
3: आप रूसी जो है वो भी हो जाता है
2: और
3: बाल भी काफी झड़ने लगता है, तो इस क्या कहेंगे आप, उसकी देख रेख हम कैसे करें?
2: ये बारिश के मौसम में प्रायः सभी व्यक्ति के बाल गिरते हैं, ये तो बारिश में हमेशा हर व्यक्ति का होता ही है, लेकिन बारिश में कारण यही है कि बारिश में आदमी भींग जाता है, बाल में रूसी हो जाता है, ये सब कारण, जैसे भींगता है आदमी तो वो बाल ठीक से सूखता नहीं है, सूखा नहीं पाता है, फिर आपका जैसे सफाई करना चाहिए जैसे सप्ताह में 2-3 दिन वो सफाई नहीं हो पाता है, बाल हमेशा भीगते रहता है बारिश में, कारण है रूसी, इसी हो जाता है, रूसी उसी से हो जाता है, प्लस जो बाल नहीं सूखता उससे गंदगी हो जाता है तो बाल ज्यादा झड़ता है।
3: यानी आप कहेंगे सप्ताह में तब हमें कितने बार,
2: कम सप्ताह में 2 दिन बाल एकदम जरूरी है,
3: जरूरी हो जाता है
2: एकदम जरूरी। और जैसे इस मौसम में बाल तो बहुत कम ही लोग मतलब धोते हैं।
3: धोते हैं हाँ।

0: लेकिन हाँ, सलाह देंगी आप कि दो बार जरूर से जरूर सप्ताह में धोना बाल चाहिए। को धोए। अच्छा, और उसके बाद सुखाए जरूर।
1: हाँ, धोने के बाद उसको सुखाए जरूर,
0: ऐसे भींगा ना छोड़ दे।
1: अगर भीगा रहेगा तो वो आपका बाल झड़ेगा। अच्छा। प्लस रूसी होगी, गंदगी हो जाएगी।
0: अच्छा।
1: ये सब होना जरूरी है, इसीलिए बाल अभी के मौसम में बाल को अगर धोते भी है तो सुखाइए, और यह तो फिर बारिश में भींगते हैं तो भी सुखाइए।
0: अच्छा, बहुत सारी ऐसी बहने हैं जो क्या कहेंगे, चिपचिपापन के कारण तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या तेल लगाना ऐसे तो जरूरी है ही, लेकिन आप एक सौंदर्य विशेषज्ञ हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: तेल तो एकदम जरूरी है लगाना, क्योंकि आप अगर तेल नहीं लगाती हैं तो आपका जो मैंने जड़े जो है वो एकदम बिना तेल का मजबूती खत्म हो जाता है, तो हाँ कमजोर हो जाता है, तो वो आपका झड़ने लगता है। बाल में तेल मैंने आप दिन में आप धो दीजिए, लेकिन आप तेल लगा के 1 घंटा जरूर रखिए। अच्छा, कोई भी टाइम।
0: अच्छा, अच्छा,
1: 1 घंटा आप रखिए तो सबसे अच्छा होगा। जो महिलाएं पसंद नहीं करती है तेल लगाना, तो रात में लगा के 1 घंटा रख के सुबह धो सकती है।
0: यानी रात को लगाएं, सुबह जैसे हाँ, नहाती हैं जिस
1: समय। तेल आप लगाएंगे तो 1 घंटा आपको रखना है, उसके बाद तेल का कोई काम नहीं आता, वो सिर्फ चिपचिपापन ही देता है।
0: अच्छा,
1: बालों
0: अच्छा,
1: में
0: यानी धोने से पहले आप तेल को जरूर से लगाएं
1: तेल। और अच्छा, बाल में जरूरी नहीं है लेकिन जड़ में एकदम अच्छे से मसाज कीजिए, और बारिश के दिनों में या फिर कोई भी दिन में, बारिश में तो जरूरी है लेकिन कोई भी दिन आप बाल में तेल लगाने के बाद स्टीम जरूर दीजिए।
0: अच्छा?
1: क्योंकि देखिए, रोम छिद्र जो आपका बाल जो बंद हो जाता है, रोम छिद्र, उससे क्या होता है, रूसी उसी हो जाता है, रूसी से पूरा बंद कर देता है रोम छिद्र, तो बाल जो झड़ता है वो निकलता नहीं है दोबारा। अगर आप स्टीम लीजिएगा तो उससे क्या होता है, रोम छिद्र खुल जाएगा, तो रोम छिद्र खुलने के बाद मैंने आपका जड़ जो है वो भी मजबूत रहेगा, रोम छिद्र खुलेगा तो आपका बाल निकलेगा, ये सब होता
0: तो
1: है।
0: ये स्टीम किस तरह से बहने ले?
1: स्टीम जैसे आप मशीनें भी आती है तो खैर मशीन की
0: मशीन
1: तो बातें
0: उपलब्ध नहीं हो पाएगा,
1: तो जैसे ग्रामीण महिलाएं या फिर कोई भी, आप कोई टावल गरम पानी करके टावल को भिगा लीजिए, उसके बाद आप टावल पूरा सर पे लपेट लीजिए, 10 मिनट रखिए, फिर दोबारा इसी तरह से कम 2-3 बार आप 4 बार लीजिए।
0: अच्छा, भाप लेने से भी तो होगा?
1: हाँ, भाप भी ले सकते
0: जैसे
1: हैं।
0: मान लीजिए हम उबलता पानी खोल रहा है, पानी हम दूर से ही यूं ऐसे इस तरह से भाप ले रहे हैं,
1: ले सकते
0: सर को झुका के,
1: तो उसमें
0: सावधानी पूर्वक।
1: उसमें क्या है, उतना आरामदायक आपको नहीं लगेगा।
0: अच्छा,
1: जितना
0: अच्छा,
1: आप मैंने कोई
0: एक तौलिया से, हम मोटा कपड़ा से जिसको आप बोलेंगे,
1: उससे अच्छा से गर्म पानी में उसको भिगा के आप 10 मिनट लीजिए, फिर उसको डुबाइए, फिर लीजिए, इस तरह से 4 बार लीजिए, उसके बाद आप छोड़
0: दीजिए। अच्छा, गर्म खौलता पानी में अच्छी तरह से टावल को भिंगो लेना है, हल्का निचोड़ लेना है, और बालों में अच्छी तरह से उसे लपेट लेना है। ऐसा देखना है ये कि पूरा आपका जड़ों तक उसका जो भाप है वो आए।
1: हाँ, जड़ तक जाना चाहिए।
0: अच्छा, बहुत अच्छा कहा आपने। अच्छा, आगे और क्या बता रही हैं आप?
1: जैसे अभी अभी के मौसम में बस वही स्टीम ये सब ले सकते हैं, फिर आपको दही अंडा ये सब भी लगा सकती है, लेकिन अभी के मौसम में ये सब लगाइएगा तो मैंने अच्छा तो रहेगा, लेकिन आपको पूरा सावधानी पूर्वक और ध्यान देके, जैसे दही अंडा लगा लिए, आप बाल ठीक से नहीं धोएंगे तो बाल
0: महकेगा।
1: हाँ, महकेगा। प्लस आपका मैंने ये सब जो जम जाएगा उससे भी रूसी होने का संभावना
0: अच्छा,
1: है
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो लगाइए, लेकिन इतना मतलब सफाई से कीजिए कि मतलब आपका खराबी ना करे।
0: अच्छा, सावधानी पूर्वक काम को करना
1: पूरा
0: है।
1: आप मेहंदी लगा सकती हैं।
0: अच्छा,
1: मेहंदी
0: लगाइए।
1: हाँ, मेहंदी आप हर मौसम में लगा सकती हैं।
0: अच्छा,
1: मेहंदी
0: अच्छा,
1: मेहंदी कभी खराबी नहीं करता है। आप अपना जैसे हम शहर के लोगों के लिए तो पैकेट में मेहंदी बना बनाया आता है, वो लेके लगा लेंगे, लेकिन देहात जैसे जो गाँव के लोग, वो अच्छी तरह से पत्ते को पीस के लगाइए।
0: अच्छा।
1: पत्ते को पीस के लगाइएगा तो ज्यादा फायदा करेगा।
0: पत्ता को अच्छे से धो के उसको
1: पीस
0: लेना, तो उसमें कुछ मिक्स भी करना, क्योंकि कुछ, वो कुछ ऐसा भी होता है ठंडा भी किसी को लग जाता है, तो उस किस तरह से हम इस्तेमाल,
1: जैसे आप जिसको जैसे ठंडा लग जाता है तो जल्दी मतलब जैसे 5-10 मिनट अपना रखा और निकाल दिया।
0: अच्छा।
1: और ज्यादा देर ऐसे तो आप मेहंदी लगा के कम से कम 1-1.5 घंटा रखना चाहिए।
0: तो आपका बाल लाल नहीं हो जाएगा?
1: बाल लाल करने के लिए और भी काफी समय की जरूरत होती है।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
1: 4 घंटे की। और जिसको मतलब सिर्फ अपना बाल को मतलब चमक लाना है तो वो 1 घंटा 1/2 घंटा रख के निकाल दे। और जिसको रेड करना है तो वो आपका 4 घंटा।
0: तो उसके अंदर हम क्या दे, सिर्फ मेहंदी ही डाले या और कुछ डाले?
1: आप जैसे केवल मेहंदी

0: को भी यूज कर सकते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: और जैसे किसी को बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए रेड, तो वो कॉफ़ी मिला सकते हैं, चाय पत्ती के पानी में घोल के लगा सकते हैं, रात को उसको अच्छी तरह से भिगा लेना
1: तो
0: है।
1: हम यदि काला करना चाहें तो?
0: काला करना चाहेंगे तो आप लोहा का कढ़ाई में कीजिएगा।
1: अच्छा,
0: लोहे की कढ़ाई में, ऐसे आपकी बाल जो है, जो व्हाइट बाल है वही रेड करेगा।
1: हाँ वो तो
0: हाँ,
1: रेड करेगा ही,
0: हाँ,
1: लेकिन है ना कोई रेड पसंद नहीं करता है, थोड़ा सा चाहता है कि कालापन उसमें
0: लोहे की
1: आए।
0: कढ़ाई में आप कीजिए, उससे आपका बाल मतलब रेड नहीं करेगा। जैसे उसमें आंवला रीठा ये मिला के अब मेहंदी को घोल बना के आप रात में भिगा के दूसरे दिन आप लगा सकते हैं।
1: अच्छा, तो कितना मात्रा में क्या लेना है? जैसे हम लिए एक सर के लिए, हम कितना मेहंदी लेंगे, कितना रीठा लेंगे?
0: आप जैसे एक सर के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम मेहंदी, छोटे बाल के लिए 50 ग्राम मेहंदी, उसमें आप ज़्यादा नहीं आंवला रीठा ये सब आप माने चार चार पीस करके आप मिला लीजिए।
1: आज चूर्ण जो आता है
0: हाँ
1: वो
0: वो
1: उसका,
0: हाफ माने सोचिए 50 का 25।
1: अच्छा, हाफ हाफ करके
0: हाँ
1: हमको सब
0: हाँ
1: लेना, आधा आधा
0: हाँ
1: हिस्सा में। अच्छा,
0: जैसे 50 ग्राम मेहंदी है तो 25 ग्राम आप वो मिला दीजिए,
1: रीठा हो
0: रीठा
1: या
0: हाँ
1: आंवला
0: ये
1: हो,
0: हाँ
1: उस
0: आंवला,
1: मिक्स करके रख देना है लोहे की
0: हाँ
1: कढ़ाई में,
0: लोहे की कढ़ाई
1: उसके
0: में,
1: बाद दूसरे दिन उसे लगा करके 1 घंटा चाहे जितना देर आप
0: हाँ
1: चाहती हैं
0: हाँ
1: लगा के रखें, और साफ पानी से फिर धो
0: साफ
1: लें।
0: पानी से धो लीजिए।
1: और धोएं तो जरूर से जरूर उसे
0: हाँ
1: सुखाएं।
0: बाल एकदम सुखाना
1: हाँ,
0: है।
1: कुछ खास बातें बताना चाहेंगी बहनों को
0: हाँ जरूर
1: तो क्या
0: बताएंगे।
1: बताना चाहती हैं, बताएं?
0: जैसे बाल अभी बहुत ज़्यादा मतलब ये वाइट हो रहा है,
1: हाँ,
0: जैसे वाइट हो जाता है किसी का बाल, बहुत झड़ता है, ये सब चीज़ें जैसे है, तो जैसे बहुत कोई होता है कि उतना ध्यान नहीं देता है, तो जैसे बाल के लिए एक मतलब जैसे जैतून का तेल आता है, ये तेल बहुत ज़्यादा ही मतलब ये बहुत माने किसी को पता रहता है किसी को नहीं रहता है। जैतून का तेल आप थोड़ा सा हल्का गर्म कर लीजिए और माने सर में मालिश कीजिए रात में डेली,
1: जी
0: आपको कोई भी तेल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप
1: अच्छा
0: उसको लगाइए, आप देखिए बाल एकदम झड़ना रुक जाएगा आपका।
1: अच्छा
0: फिर जैसे नींबू सरसों तेल हुआ, इसको आप लगाइए बाल में और 1 घंटा रखिए, उससे भी बाल आपका झड़ना रुकेगा। ये सब
1: और
0: चीज़ है
1: कंडीशनर
0: क्या?
1: का भी काम करेगा?
0: हाँ ये
1: अरे
0: सब
1: वाह,
0: करेगा।
1: तो बहुत अच्छी बातें बताई आपने। तो बहनों, हम उम्मीद करते हैं कमलेश्वरी जी जो सौंदर्य विशेषज्ञ है, बरसात के दिनों में त्वचा और बालों की देखरेख के विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी, हम उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। हाँ, आप यदि कुछ जानना चाहती हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमें खत लिखिएगा। तो कमलेश्वरी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, बारिश में त्वचा और बालों का ख्याल कैसे रखें। आपसे बातें कर रही थी राधा रानी डे, और हमारी भेंट वार्ताकार थी श्रीमती कमलेश्वरी दास।
3: और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विविधा यही समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, वक्त हो चला है कार्यक्रम रस रंजन का। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं फिल्म फिजा के इस गीत से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में फिल्म जुर्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

सर तुम फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। श्रोता इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रस रंजन यही समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का सबसे पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वजह तुम हो से। आवाजें हैं मिथुन अल्तमश फरीदी और तुलसी कुमार की।

0: गुरु रंधावा का गाया फिल्म तुम्हारे सुलू का गाना अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत में।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गाना आइए सुनते हैं फिल्म हेट स्टोरी 3 से। आवाजें हैं अरमान मलिक और नीति मोहन की।

मीट ब्रदर्स और मोनाली ठाकुर की आवाज़ों में फिल्म बागी का गाना अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम फिल्म संगीत के आखिर में आइए सुनते हैं तुम बिन फिल्म का ये गाना अंकित तिवारी की आवाज़ में।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हो रहे हैं और इस वक्त हम खास आपके लिए लेकर आते हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जुहार रांची। तो बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे कुछ ही पलों में।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल,
0: स्वागत है, अभिनंदन है आपका आपके अपने प्रोग्राम जोहार रांची में। और आज इस प्रोग्राम के सफर में एक बार फिर आपकी हम सफर है आपकी दोस्त शिल्पी
3: और साथ में रेनु। दोस्तों, कहते हैं ना, मुश्किल हमारे रास्ते में रुकावट बनने नहीं बल्कि हमारी ताकत को पहचानने आती है।
0: जी हाँ, जिंदगी में हर किसी के सामने कभी ना कभी ऐसा दौर आता है जब मंजिल दूर और रास्ता मुश्किल दिखाई देता है।
3: लेकिन याद रखिए, हर परिस्थिति हार परिस्थितियों से नहीं, हार मान लेने से ही होती है। इसलिए अगर आप सपने बड़े हैं तो हौसले भी बड़े रखिए।
0: बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज का एक छोटा सा प्रयास आने वाले कल को तो जरूर बदल सकता है ना।
3: बस खुद पर विश्वास रखिए और कदम बढ़ाते रहिए और अपनी कोशिशों को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठने का साहस रखते हैं।
0: इसी सकारात्मक सोच, नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ शुरू करते हैं आज के सफर को और कहते हैं
3: जोहार।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में अब बातें आज के इतिहास की। तो 23 अगस्त का दिन भारत और दुनिया के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है। भारत के लिए ये दिन अंतरिक्ष विज्ञान के एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज है, क्योंकि इसी दिन सन 2023 में भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा।
1: इस ऐतिहासिक दिन की याद में भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया, और 2008 में आज ही के दिन इसरो के चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की पहली बार डिजिटल तस्वीरें भेजी।
0: सन 1966 में आज ही के दिन अमेरिका के लूनर ऑर्बिटर 1 अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की पहली तस्वीर खींची,
1: और सन 1939 में आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ और जर्मनी के बीच गैर आक्रामकता संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
0: सन 1947 में आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री बने। सन

0: 1990 में आर्मेनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की।
1: सन 1993 में सन 2000 के ऐतिहासिक ओलंपिक खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलियाई नगर सिडनी को सौंपी गई।
0: सन 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण रोका। सन 2004 में आज के दिन अमेरिका के जस्टिन गैटलिन 100 मीटर फर्राटा दौड़ जीतकर पृथ्वी के सबसे तेज धावक बने।
1: चिली के निकोलस मासू ने 2004 में ही अमेरिका के मार्डी फिश को हराकर ओलंपिक पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक जीत लिया।
0: सन 2007 में 23 अगस्त को ही यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर 2007 में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को शामिल किया गया।
1: और आज ही के दिन 1456 में जर्मनी के माइंस शहर में दुनिया की पहली छपाई मशीन बनाने वाले जर्मन वैज्ञानिक योहानिस गुटेनबर्ग ने आधुनिक ढंग से
0: छापाखाने में
1: दुनिया की पहली मुद्रित बाइबल का प्रकाशन किया था।
0: और इस बाइबल को गुटेनबर्ग बाइबल कहते हैं। सन 1986 में बंबई के शंभू आभावाने ने सबसे लंबे समय तक टाइपिंग का मैराथन जीतकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था।
1: सन 2011 में चीन के वैज्ञानिकों ने
0: ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के उद्गम स्थल का पता लगाया रेनू, और दोनों के मार्ग की लंबाई का व्यापक
1: पूरा अध्ययन पूरा किया था।
0: हाँ, बिल्कुल। और संचार के क्षेत्र में एक और नया अध्याय जुड़ा जब 23 अगस्त 1995 को देश का पहला सेलुलर फोन कलकत्ता में व्यावसायिक तौर पर पेश किया गया।

ਨਾ ਜਨਕ ਤੇਰਾ ਪੰਨ ਨੂੰ ਨੱਕ ਮੈਂ ਚੱਕ।

0: जोहर रांची में अब जिक्र उन मशहूर शख्सियतों का जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आपको बताएं कि आज ही के दिन सन 1975 को प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक विनायक राव पटवर्धन का निधन हुआ।
1: इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय पूना की स्थापना की और आजीवन संगीत सेवा की। इन्होंने कई पाठ्य पुस्तकें भी लिखी जिनमें राग विज्ञान प्रमुख है। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
0: सन 1994 में भारत की प्रसिद्ध महिला तैराक आरती साहा ने भी अंतिम सांसें ली। वो भारत और एशिया की ऐसी पहली महिला तैराक थी जिसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था।
1: आरती साहा ने ये कारनामा 1959 में कर दिखाया और 1960 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आरती साहा पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। उनको हिंदुस्तानी जलपरी कहा जाता है।
0: सन 2003 में कन्नड़ साहित्यकार A.N. मूर्ति राव का निधन हुआ। इनके द्वारा रचित एक संस्मरण चित्रगलु पत्रगलु के लिए सन 1979 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: सन 2013 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं आलोचक डॉक्टर रघुवंश सहाय वर्मा का निधन हुआ। इन्हें साहित्य भूषण सम्मान, भारत भारती सम्मान, शंकर सम्मान, जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान और मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: डॉक्टर रघुवंश इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के फेलो रहे। जन्म से ही इनके दोनों हाथ नहीं थे लेकिन इन्होंने पैरों से लिखने में महारत हासिल कर ली और निरंतर पैरों से लिखते हुए इतना लिख दिया कि कई पुरस्कारों से सम्मानित किए गए।
1: सन 2018 में भारत के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार कुलदीप नैयर का भी निधन हुआ। ये 25 वर्षों तक द टाइम्स लंदन के संवाददाता भी रहे।
0: सन 1999 में कुलदीप नैयर को एलुमनी मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

0: आकाशवाणी रांची पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में अब बातें मौसम के मिजाज की। तो कल शाम से बारिश ने रांची को एक बार फिर सराबोर कर दिया है। आज भी मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है कि कभी बादलों की चादर आसमान पर छाएगी तो कभी बूंदों की रिमझिम धरती को भिगो सकती है, और ऐसा बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने की वजह से है।
1: अगर बात करें शिल्पी आज के तापमान की, तो आज के अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना।

0: करना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में बादल छाए रह सकते हैं
1: और जब बादल रहेंगे तो बारिश और गरज चमक की भी संभावना पूरी रहेगी, यानी मौसम का संदेश साफ है। छाता साथ रखिए, सफर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलिए जिससे गाड़ियों की रफ्तार तेज ना करनी पड़े।
0: बारिश की फुहारों का आनंद लेना बिल्कुल मत भूलिए और रांची की बारिश की तो बात ही निराली है। हरी भरी पहाड़ियों पर गिरती बूंदे और पेड़ों से टपकता पानी और मिट्टी की खुशबू,
1: मानो शहर कह रहा हो थोड़ा ठहरिए, बारिश को सिर्फ देखिए नहीं इसे महसूस कीजिए। रिमझिम गिरती बूंदों के संगीत को भी थोड़ा महसूस कीजिए।
0: हमारे शहर और पूरे राज्य के इस सुहाने बरसाती मौसम का भरपूर आनंद लीजिए, लेकिन हाँ अपनी सुरक्षा को बिल्कुल भी नजरअंदाज न कीजिए। गरज चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे, किसी बिजली के खंभे के आसपास या अनावश्यक यात्रा से बचना बेहतर होगा।
1: मौसम चाहे जैसा भी हो, धूप खिली रहे या बारिश की फुहारें हो, हमारे दिन को खूबसूरत बनाने की शुरुआत एक मुस्कान से तो हो सकती है ना। तो खुशी में अपनी सुरक्षा को बिल्कुल मत भूलिए और बारिश के मौसम को दिल से महसूस कीजिए और सुनिए ये खूबसूरत गीत।

0: दोस्तों, आसमान को निहारते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि इन टिमटिमाते तारों के उस पार क्या है? चांद की सतह कैसी है? अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में और कितनी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है?
1: इंसान ने सदियों से इन सवालों के जवाब तराशे हैं और भारत ने भी इस खोज में अपनी एक शानदार पहचान बनाई है।
0: 23 अगस्त भारत के अंतरिक्ष इतिहास का वो गौरवशाली दिन है जब चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी।
1: इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में हर वर्ष 23 अगस्त को भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाता है। ये सिर्फ विज्ञान की सफलता का उत्सव नहीं है,
0: बल्कि ये उस सोच का उत्सव है जो कहती है अगर सपने आसमान से भी बड़े हों तो उन्हें पूरा करने के लिए हौसला भी उतना ही बड़ा होना चाहिए।
1: चंद्रयान 3 की सफलता ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि अपनी मजबूत पहचान बना रहा है।
0: लेकिन अंतरिक्ष की ये यात्रा केवल रॉकेट और उपग्रहों की कहानी नहीं है, इसके पीछे है हजारों साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और उन युवाओं की मेहनत जिन्होंने रात दिन एक करके भारत के सपनों को अंतरिक्ष तक पहुंचाया है।
1: अंतरिक्ष विज्ञान का फायदा सिर्फ चांद तक पहुंचने में नहीं है। आज हमारे मौसम की जानकारी, संचार व्यवस्था, नेविगेशन, कृषि, आपदा प्रबंधन, टेलीमेडिसिन और शिक्षा, इन सब में अंतरिक्ष तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: यानी अंतरिक्ष जितना ऊपर है उसका असर हमारी जिंदगी में उतना ही गहरा है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमें ये संदेश देता है कि अपने सपनों की सीमा मत तय कीजिए, क्योंकि कभी किसी ने कल्पना की थी कि भारत चांद पर अपना तिरंगा लहराएगा और आज वो कल्पना इतिहास का हिस्सा है।
1: इस वर्ष यानी 2026 के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की आधिकारिक थीम है विकसित भारत की ओर, नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा।
0: जी हाँ, विकसित भारत, इनोवेटिंग, collaborating and inspiring to global space leadership.
1: इस दिन का मुख्य उद्देश्य छात्रों और युवाओं में विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति रुचि बढ़ाना है। इस अवसर पर इसरो और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अंतरिक्ष प्रदर्शनियों और विज्ञान संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होता है।
0: आइए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर हम उन सभी वैज्ञानिकों को नमन करें जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सपने को नई ऊंचाइयां दी, और ये संकल्प लें कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ चांद तक नहीं बल्कि अंतरिक्ष की अनंत संभावनाओं तक भारत की कहानी लिखेंगे।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में अब बातें पर्यटन की। कहते हैं दुनिया में कई शहर ऐसे हैं जिन्हें देखा जा सकता है, लेकिन कुछ शहर ऐसे भी हैं जिन्हें महसूस किया जाता है। और सावन के महीने में जब पर्यटन का जिक्र हो तो भगवान भोलेनाथ की नगरी से बेहतर भला क्या हो सकता है।
1: भगवान शिव की नगरी अध्यात्म का शहर, धार्मिक राजधानी, इतिहास की झलक वाला शहर और गंगा किनारे बसी पुरातन संस्कृति की कहानी वाला शहर। उत्तर प्रदेश की वाराणसी को और न जाने क्या क्या नाम दिए गए हैं। वैसे काशी और बनारस इसके प्रचलित नाम है।
0: ये वो शहर है जहाँ सुबह की पहली किरण गंगा के पानी पर उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे सूरज भी यहाँ आकर थोड़ा ठहर सा गया हो। जहाँ घाटों की सीढ़ियों पर बैठा कोई साधु ध्यान में लीन है, कोई विद्यार्थी किताबों के पन्नों में अपना भविष्य तलाश रहा है, तो कोई नाविक गंगा की लहरों के साथ अपनी रोजी रोटी तलाश रहा है, और कहीं दूर मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही हैं।
1: यही तो है बनारस, जहां अध्यात्म और जीवन दोनों साथ साथ चलते हैं। सुबह का बनारस हो तो घाटों की हलचल, नाव की धीमी गति, गंगा पर पड़ती सुनहरी रोशनी और हवा की कुलती मंत्रों की ध्वनि,
0: और शाम होते ही वही घाट दीपों से जगमगा उठते हैं। गंगा आरती की भव्यता से मन विस्मित हो उठता है। हजारों दीपक जब गंगा की लहरों पर तैरते हैं तो लगता है आसमान के सारे सितारे धरती पर उतर आए।
1: और मान्यता है कि बनारस शहर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी, और ये शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर ही टिका है। ऋग्वेद, स्कंद पुराण और रामायण महाभारत जैसे कई शास्त्रों में इस शहर का उल्लेख है।
0: हालांकि आधिकारिक तौर पर बनारस ज्यादा जगहों पर दर्ज नहीं है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे BHU भी कहते हैं, इसके नाम पर मोहर लगाने के लिए काफी है। BHU एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में मशहूर है।
1: ये वही पवित्र स्थल है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने महाकाव्य रामचरितमानस लिखा था। इससे संसार के सबसे पुराने नगरों में माना जाता है। ये नगरी जो है ना, दक्षिणी पूर्वी कोने में वरुणा और 80 नदियों के गंगा संगमों के बीच बसी हुई है।
0: लेकिन बनारस सिर्फ घाटों का शहर नहीं, ये संगीत की साधना है, साहित्य की परंपरा है। बनारसी साड़ियों की महीन और खूबसूरत बुनावट है, ये गलियों से मिलने वाली गर्मजोशी है, कचौड़ी जलेबी की खुशबू है, बनारसी पान का रंग है, और एक अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है।
1: ये शहर बनारस घराने से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतों की उत्पत्ति का केंद्र है। बनारस इसलिए खास नहीं कि यहाँ बहुत कुछ पुराना है, बल्कि खास इसलिए है कि यहाँ प्राचीन परंपराएं आज भी सांस लेती हैं और नई पीढ़ी को अपने रंग में रंगती हैं।
0: तो अगली बार जिंदगी की भाग दौड़ जब आपको थका देना तो बस बनारस हो आइए, गंगा किनारे बैठिए, एक कुल्हड़ चाय पीजिए, घाटों पर सूर्योदय देखिए, और बनारसिया अंदाज में इस शहर के ठहराव को थोड़ा महसूस कीजिए।

0: करियर की उड़ान में आज बातें करते हैं अनोखी और सुनहरे करियर की, मिट्टी का डॉक्टर। जी हाँ, सॉयल साइंटिस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मिट्टी पर हम चलते हैं वही हमारी थाली तक पहुंचने वाले हर दाने की कहानी लिखती है।
1: लेकिन क्या इस मिट्टी की भी कोई जांच होती है? क्या इसकी भी सेहत का ध्यान रखा जाता है? जी हाँ, और ये जिम्मेदारी निभाते हैं सॉयल साइंटिस्ट यानी मिट्टी के वैज्ञानिक।
0: सॉयल साइंटिस्ट मिट्टी की गुणवत्ता, उसकी उर्वरता, उसमें मौजूद पोषक तत्वों और उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं। वे ये पता लगाते हैं कि कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उसे बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
1: आज जलवायु परिवर्तन, घटती खेती योग्य भूमि और बढ़ती आबादी के दौर में सॉयल साइंटिस्ट की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। स्वस्थ मिट्टी की स्वस्थ फसल, सुरक्षित पर्यावरण और बेहतर भविष्य की नींव है।
0: जिन लोगों को भी विज्ञान, प्रकृति और खेती में रुचि है, उनके लिए ये करियर एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
1: 12वीं के बाद कृषि, मृदा विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और संबंधित विषयों में स्नातक या फिर विशेषज्ञता हासिल करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है।
0: शोध संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों, उर्वरक कंपनियों, पर्यावरण संगठनों और निजी कृषि कंपनियों ने ऐसे विशेषज्ञों की लगातार मांग रखी है।
1: एक सॉयल साइंटिस्ट केवल मिट्टी का अध्ययन नहीं करता, बल्कि किसानों को सही सलाह देकर उनकी पैदावार बढ़ाने, रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग और प्राकृतिक संस्थानों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: याद रखिए, धरती की सेहत ही मानवता की सबसे बड़ी दौलत है और उस दौलत की रक्षा करने वाले होते हैं सॉयल साइंटिस्ट।
1: तो आप भी अगर ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जिसमें विज्ञान भी हो, प्रकृति से जुड़ाव भी हो, समाज की सेवा भी हो, तो भविष्य की अपार संभावनाएं भी हैं। ये तो सॉयल साइंटिस्ट बनना आपके लिए एक प्रेरणादायक और सार्थक विकल्प हो सकता है।
0: हरियाली सिर्फ पेड़ों से नहीं बल्कि स्वस्थ मिट्टी से भी जन्म लेती है और उस हरियाली के पीछे होता है एक समर्पित सॉयल साइंटिस्ट जो चुपचाप धरती का भविष्य संवार रहा होता है ताकि धरती सोना उगलती रहे।

0: बारिश की फुहारें मन को सुकून तो देती हैं, लेकिन बदलता मौसम शरीर की इम्यूनिटी की परीक्षा भी लेता है। ऐसे में कुछ आसान घरेलू नुस्खे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएं तो बारिश के मजे भी बने रहेंगे और सेहत भी। क्यों रेनू,
1: अगर हल्की ठंड लग रही हो और गले में खराश महसूस हो रही हो तो अदरक, तुलसी और काली मिर्च की हल्की सी चाय आराम पहुंचाती है।
0: चाहें तो इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि शहद को बहुत गर्म पेय में ना मिलाएं। बारिश के मौसम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में अगर खाने के बाद एक चम्मच भुना अजवाइन और भुना सौंफ मिलाकर खा लें तो ये पाचन में मदद करेगा।
1: भींगकर अगर घर लौटे हों तो गुनगुने पानी से हाथ पैर धोकर सूखे कपड़े पहन लीजिए। इससे शरीर को गर्माहट मिलती है और संक्रमण का खतरा कम हो जाता है।

0: और चलते चलते आखिर में बस इतना कहना चाहेंगे कि मंजिल कभी रास्तों से नहीं डरती, वो सिर्फ उन कदमों का इंतजार करती है जो पूरे विश्वास से उसकी तरफ बढ़ते हैं।
1: अपने सपनों को जिंदा रखिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए और मुस्कुराते हुए जीवन की हर चुनौती का स्वागत कीजिए।
0: इसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ वक्त हो चला है आज के जोहार राज्य के पन्नों को यहीं समेटने का। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस प्रोग्राम के सफर से लेते हैं इजाजत और कहते हैं जोहार।

अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम, क्षमा कीजिएगा, अभी आप सुन रहे थे आपका पसंदीदा प्रोग्राम जोहार रांची। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:31 हो रहे हैं। ये वक्त है श्रोताओं के फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का, और आपकी पसंद कार्यक्रम में सबसे पहले हमने ली है इनकी फरमाइश। ये है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, और इन्होंने सुनना चाहा है दम लगा के हईशा फिल्म से पेपॉन को। गीत के बोल लिखे हैं वरुण ग्रोवर ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

भाग मिल्खा भाग ये फिल्म का नाम, और आइए सुनते हैं इस फिल्म से जावेद बशीर और श्रेया घोषाल को। इस गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने।

अगली फरमाइश हमने ली है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा की, और इन्होंने सुनना चाहा है देवदास फिल्म से श्रेया घोषाल और उदित नारायण को। गीत की बोल लिखे हैं नुसरत बद्र ने और धुन बनाई है इस्माइल दरबार ने।

अगली फरमाइश हमने ली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की, और इन्होंने सुनना चाहा है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल को लकी फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है अदनान सामी ने।

इस गीत के साथ ही हमारे श्रोताओं की फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बज चुके हैं, आइए अब सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आज इस कार्यक्रम को लेकर आपसे मुखातिब हैं खुशबू और महजबीन।

0: नमस्कार बहनों, कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में सभी बहनों का स्वागत है। मैं जबीन आपके साथ में है और हमारे साथ एक और रेडियो सखी है
1: खुशबू। नमस्कार बहनों, आज अपनी सभी बहनों को से वो ढेर सारी बातें करेंगे जिनसे वो काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। और बहनों, हम कार्यक्रम में बहुत अच्छी सी बातें करने वाले हैं, संगीत भी सुनाने वाले हैं, है ना लम्हा जमीन?
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है खुशबू तुमने। कार्यक्रम की शुरुआत इतनी अच्छी बातों से होगी ना, तो क्या बात है। तो बताओ क्या खास है आज के कार्यक्रम में?
1: जैसा कि हमने अपनी बहनों को बताया कि आज बहुत कुछ खास है। कार्यक्रम में हम ऐसे टिप्स देंगे जिनको अगर हम अपनाते हैं तो दिन भर फ्रेश महसूस करते हैं, यानी तरोताज़ा महसूस करते हैं। बस आपको एक ही चीज़ करना है, वो है संगीत से जुड़ना और अपनी सखियों से जुड़ना है, है ना? और आप देखेंगे कि आपकी थकान है ना, बस यूं ही गायब हो जाएंगी।
0: और इस संगीत की जिस तरह से तुम बात कर रही हो, तो हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को नहीं बता पाते हैं, तो उस वक्त संगीत के माध्यम से हम इस बात को कह देते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहते हैं। संगीत को अगर हम देखें तो खुशियों से गहरा संबंध है। संगीत अगर हम इसके अर्थ में अगर जाएंगे तो इसमें गीतों का संग भी हो सकता है, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि ये संगीत गीतों का संग भी होता है। यह संगीत का सीधा हमारी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालता है, जिससे कि खुशियां प्राप्त होती हैं। संगीत यानी कि संगीत और इसके से जुड़ी हमारे दुख सुख सभी जुड़े हुए होते हैं। संगीत हमारे श्रवण के द्वारा हमारे मस्तिष्क में कुछ नया रसायन भी प्रदान करता है जो हमें खुशियां देता है। संगीत के द्वारा हमारे मन और मस्तिष्क में रिवोल्यूशन के दौरान भी हमें मानसिक खुशियां दे सकते हैं। और अगर हम ये भी कहें कि संगीत के कई रंग होते हैं, जैसे गाना बजाना, जैसे कि सिद्धांत है कि सुनना गुनगुनाना, और हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा पैदा करते हैं, यानी कि खुशबू। हम अगर इसकी जितनी भी तारीफ करें ना, ये कम है, और कम भी बिल्कुल भी कम, इसलिए कि हम अपनी जिंदगी को अधूरा समझते हैं कि ये अगर संगीत ना रहे तो पता नहीं हम अपनी खुशी अपने गम कैसे ये दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, संगीत बहुत ही अच्छा माध्यम होता है वैसे भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। और संगीत सुनने से ना कभी कभी मन में बहुत खुशी भी मिलती है, जिसे डोपामाइन कहते हैं, जैसा कि तुमने बताया, और वो हमें खुशी देता है। और कभी कभी हम अपनी भावनाओं को संगीत से जोड़ पाते हैं। और संगीत, अगर तुम कभी कभी अकेले हो और संगीत अपनी मनपसंद संगीत का मजा उठा रही हो, तो उससे बहुत ही अच्छा फील होता है। और संगीत में वो जादू होता है, कहते भी है संगीत बहुत ही अच्छी थेरेपी भी होती है। अगर आपका मन उदास है तो आप संगीत सुनिए, अगर आपका मन खुश है तो संगीत सुनिए। और आजकल बहुत सारे अस्पताल में भी संगीत थेरेपी का यूज किया जा रहा है मज़बीन, और कहा भी जाता है कि संगीत सुनने से बहुत ही अच्छा फील होता है जब आप अपने मनपसंद संगीत को सुनते हैं।
0: और संगीत के दौरान अगर हम उसे सुनते हैं तो कुछ घटनाएं हमारे दिमाग में भी आते रहते हैं, जैसे बचपन की बातें, बचपन के वो शरारती दिन, बचपन की वो खुशियां, बचपन के वो उदासी वाले दिन, सभी का एहसास होता है। और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हम किसी अलग दुनिया में से खोते जा रहे हैं। और ये संगीत से एक चीज और है खुशबू, कि हम संगीत जिस तरह से सुनते हैं तो वो एक एहसास, उसे शायद हम अपनी जबान में उसे हम नहीं बता सकते हैं कि उसे किस तरह से हम एहसास करते हैं, महसूस करते हैं।
1: हाँ,
0: और इसका शौक भी बहुत ही अहम होता है, ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होता है। और हमारे जो भी दोस्त है, जो भी हमारे रिश्तेदार है, जो भी, इनको हम इनसे और जोड़ते चले जाते हैं अगर संगीत के माध्यम से, यानी कि संगीत बहुत ही अच्छा माध्यम है एक दूसरे को करीब लाने के लिए। और करीब लाया भी जा सकता है खुशबू, क्योंकि संगीत ऐसा है, मतलब माध्यम है ना, कि हम कहे ना कह रहे हैं कि इसकी जितनी भी तारीफ करें तो वो कम है।
1: और संगीत का हमारे मन और मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसा कि हमने अपनी सखियों को बताया और सभी जानते भी है इस बात को। और संगीत है ना, तनाव और चिंता को भी कम करता है, मन में सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करता है। और बच्चों के लिए भी संगीत उनमें रचनात्मकता, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करता है। संगीत सीखने से अनुशासन और धैर्य भी होता है, क्योंकि संगीत एक साधना है महज़बीन, और इसे करना बहुत मन को सुकून देता है। और कहा भी जाता है कि संगीत माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, और इसलिए संगीत जीवन में सुर, लय और आनंद भरने वाला एक अनमोल उपहार है। ये दिलों को जोड़ता है, भावनाओं को आवाज देता है और हमारी संस्कृति को जीवंत रखता है। इसलिए संगीत केवल सुनने की चीज नहीं, बल्कि महसूस करने और जीवन में अपनाने की भी कला है। मैं जबीन, आज हमने बहुत सारी बातें की संगीत के बारे में, तो क्यों ना एक ऐसा ही संगीत या गीत अपनी सखियों को सुनाया जाए, जिसमें आंखों से वो कुछ कह रही है।
0: हाँ, हाँ, हाँ। क्यों नहीं?

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: क्यूआर कोड स्कैन करो 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह दिन बन गया।
7: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: बैंक ऑफिस से स्वागत है आपका गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में। और अब हम अपने कार्यक्रम में हमारी तीसरी पीढ़ी हमारे घर की रौनक है उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
9: बिल्कुल सखियो आज हम वट वृक्ष के उस पड़ाव पर हैं जहां बात केवल परिवार की नहीं बल्कि उन रिश्तों की होगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। कहते हैं ना वट वृक्ष की पहचान उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसकी जड़ों की गहराई से होती है। ठीक वैसे ही किसी परिवार की मजबूती उसकी संपन्नता से नहीं बल्कि उसके रिश्तों संस्कारों और पीढ़ियों के बीच के प्रेम से यानी प्यार से होती है।
8: सही कहा खुशबू। और आज वट वृक्ष में हमारा विषय भी बहुत प्यारा है हमारी तीसरी पीढ़ी हमारे घर की रौनक। सखियों जरा सोचिए घर में दादा दादी या नाना नानी हो तो माता पिता हो या उनके साथ में नन्ही या युवा हो और तो घर केवल मकान नहीं एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्तों से भरा हुआ वो घर वो मकान नजर आता और अनुभवों में से भरा हुआ हमारा एक संसार बन जाता है। यानी कि ये परिवार एक तरह से वो रौनक बढ़ाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
9: बिल्कुल सखियों हमारे परिवार में माता पिता बच्चे और उसके बाद आने वाली पीढ़ियां हर पीढ़ी की अपनी अपनी भूमिका होती हैं लेकिन तीसरी पीढ़ी अपने आप में एक ऐसा अनुभव का संसार है जिनके पास जीवन को देखने की एक अलग ही नजरिया है।
8: हाँ खुशबू हमारी तीसरी पीढ़ी के पास जीवन का जितना अनुभव होता है ना तो परिवार को उससे उतना ही मार्गदर्शन मिलता है। साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन उतना ही मूल्यवान होता है जिनकी मौजूदगी हमारे जीवन के जो अर्थ है उसे देती है यानी कि उस अर्थ को एक रूप देती है जिसे हमें अपनी जिंदगी में जरूरत पड़ती है।
9: बिल्कुल और इन रिश्तों में हमारे घर के बड़े उस वट वृक्ष की तरह है जिसकी छांव में पूरा परिवार सुकून पाता है। सखियों जरा सोचिए बचपन में हमारी छोटी छोटी सी परेशानी पर सबसे पहले कौन चिंतित होता था। हमारी छोटी सी खुशी पर सबसे ज्यादा कौन मुस्कुराता था। और जब हम कोई गलती करते थे तो प्यार से समझाने वाला कौन होता था। यही तो हमारे बड़े होते थे
8: और उनकी गोद में हमें सुरक्षा मिलती थी उनकी बातों में अनुभव मिलता था और उनके आशीर्वाद और में उनका एक अद्भुत विश्वास मिलता है और उनके पास तो जैसे हर समस्या का समाधान होता था। यानी कि हम कहेंगे तो हमें हमारे जो ये बुजुर्ग हैं तीसरी पीढ़ी हैं वो हमें एक रास्ता एक राह दिखाते थे।
9: बिल्कुल और मुसीबत की घड़ी से हमें बचाते थे। कभी दादी की कहानी कभी नानी की सीख कभी दादाजी के अनुभव ये सब हमारे लिए अनमोल धरोहर है।
8: और आज हम आधुनिकता की दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे हाथ में मोबाइल है हमारे पास इंटरनेट है दुनिया की हर जानकारी कुछ सेकंड में मिल जाती है। ये बात तो है लेकिन हाँ यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे थोड़ा सा यहाँ पे हम वो अपनों से दूर भी कर रहे हैं।
9: बिल्कुल लेकिन सखियों एक बात सोचने वाली है इतनी सारी सुख सुविधा है हमारी जानकारी या जानकारी जो है हमें इंटरनेट दे सकता है लेकिन जीवन का अनुभव हमें कौन देता है। यह अनुभव हमारे बड़े बुजुर्गों के पास ही होती है। उनकी झुरियों में बीते वर्ष की कहानी है उनकी आंखों में अनुभव की रोशनी है और उनकी चुप्पी में भी कई बार बहुत गहरी बात छिपी हुई होती है।
8: और उनमें लेकिन आज कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे और युवा अपने व्यस्त जीवन में बुजुर्गों को पूरा जो समय देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं।
9: और यही तो हमें बदलना है मजहबी। हमारे घर के बड़ों को हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती है उन्हें चाहिए थोड़ा समय दो मीठे शब्द अपनेपन का एहसास। कभी उनके पास बैठकर पूछिए सखियों कि आपका बचपन कैसा था या फिर आपने अपने जीवन में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी देखी है। यकीन मानिए सखियों, उनके पास सुनाने के लिए कहानी नहीं होगी बल्कि पूरे सीखों का पूरा संसार होगा। तीसरी पीढ़ी के पास केवल उम्र का अनुभव नहीं होता बल्कि उन्होंने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव जो देखे होते हैं, उन्होंने परिवार को बनते देखा है, कठिन परिस्थितियों में परिवार को संभाला है और बदलते समय के साथ खुद को भी संभाला है।
10: हाँ सखियों, जरा कल्पना कीजिए कि उस घर की जहाँ सुबह की शुरुआत किसी तीसरी पीढ़ी के सदस्य की आवाज से होती है, जहाँ उनके पास बैठकर परिवार अपनी पुरानी यादें सुनता है और अपने जो बच्चे हैं अपने बचपन की कहानियाँ उन्हें सुनाते हैं, वो घर केवल मकान नहीं बल्कि वो यादों का घर बन जाता है।
9: हाँ मैजबीन, और ऐसा हो सकता है कि उनकी एक कहानी हमें जिंदगी की ऐसी सीख दे जाए जो किताब नहीं दे सकती। इसलिए कहा जाता है कि तीसरी पीढ़ी तो परिवार की चलती फिरती स्मृतियों की तरह होती है।
10: और बच्चों को केवल किताबों से संस्कार नहीं मिलते हैं, तो बहनों यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे कि बुजुर्गों के पास उनको बैठने दें, उनसे बातें करने दें, बल्कि संस्कार घर के वातावरण से भी मिलते हैं। अगर हम चाहते हैं तो हमारे बच्चे अपनों से बड़े लोगों का सम्मान करें, रिश्तों को समझे, परिवार से जुड़े, तो हमें यह अनुभव घर के भीतर भी देना होगा, यानी कि उन्हें समझाना होगा कि जिंदगी का जो अनुभव है वो उन बुजुर्गों से भी मिलते हैं जो हमें उनसे चाहिए होता है।
9: मतलब तीसरी पीढ़ी परिवार और नई पीढ़ी के बीच पुल का काम करती है। एक ओर अनुभवों से भरा अतीत तो दूसरी ओर सपनों से भरा भविष्य, इसके बीच जो रिश्ता बनता है वही परिवार को पूरा भी करता है। सखियों, एक दिन हम भी किसी ना किसी पीढ़ी के बड़े होंगे, तब हम चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी हमारी बातें सुने, हमारे अनुभवों का सम्मान करे और हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाए। इसलिए जो व्यवहार हम आज अपनी तीसरी पीढ़ी के साथ करेंगे वही संस्कार कल हमारी अगली पीढ़ी भी दिखाई देगी।
10: हाँ बहनों, और याद रखिए सखियों कि तीसरी पीढ़ी हमारे परिवार का बीता हुआ कल नहीं बल्कि आने वाले कल की नींव है, यानी कि वो नींव जो एक मजबूत रिश्तों की गहराई तक ले जाती है।
9: बिल्कुल, और सखियों घर की असली रौनक दीवारों की सजावट से नहीं हमारे घर के बड़ों की हंसी और आशीर्वाद से होती है। अपनों का हाथ थामे रखिए, रिश्तों का साथ दीजिए और अपने घर की तीसरी पीढ़ी की मुस्कान को हमेशा बनाए रखिए।

0: बहनों, फिर से स्वागत है आपका गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। अब हम आपको गृह सज्जा के रंग में जो रंगों का महत्व है ना, उसके बारे में बताएंगे। हमारे जीवन में रंगों का जो विशेष महत्व है, रंग केवल हमारे आसपास की सुंदरता को नहीं बनाते बल्कि हमारे मन और भावनाओं पर भी प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि गृह सज्जा यानी घर की सजावट में रंगों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए।
1: बिल्कुल, और सही रंग घर को सुंदर, आकर्षक, शांत और सकारात्मक बना सकते हैं सखियों। और घर की दीवारों, पर्दों, फर्नीचर, कुशन, कालीन और सजावटी वस्तुओं में रंगों का संतुलित प्रयोग किया जाए तो घर के वातावरण बिल्कुल ही खुशनुमा हो जाता है। हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम, हल्का नीला, हल्का रंग हरा रंग है ना, कमरे को खुला और शांत महसूस कराते हैं।
0: वहीं पीला और नारंगी जैसे कि गर्म रंग घर में ऊर्जा, उत्साह और खुशी का भाव पैदा करते हैं। जैसे कि बैठक के कक्ष में हल्के या डार्क के कलर के दोनों का उपयोग किया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो शयन कक्ष के लिए नीला, हरा, लेवेंडर या हल्का गुलाबी जैसे शांत रंग अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज है कि आप जो भी चुनाव करें उससे में एक देखें कि वो खूबसूरती आपकी सोच से बिल्कुल मैच करती हो।
1: बिल्कुल।
0: और ये भी है
1: क्योंकि ये सभी रंग है ना महजबीन, हाँ। हमारे मन को शांति देते हैं। जैसे शयन कक्ष है उसमें हमें सुकून भरी नींद चाहिए होती है, तो वहाँ हल्के रंगों का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हल्के रंग जैसे कि तुमने बताया कि हल्का गुलाबी हो, नीला हो, हरा हो, लैवेंडर हो, ये सभी रंग मन को शांति देते हैं। वहीं रसोई घर की अगर हम बात करें और पूजा घर की बात करें तो इसमें आप पीला, नारंगी या हल्का हरा रंग का प्रयोग कर सकते हैं जो ताजगी और ऊर्जा का हमें एहसास करवाता है। वैसे घर तो हम बड़े प्यार से बनाते हैं मेज़बीन, और घर के कमरों में जो सजावट होती है ना वो हमारी बिल्कुल भावनाओं का प्रतीक होती है। और इसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल तो बच्चों के कमरे भी होते हैं,

0: और बच्चों के कमरे में हमें चमकीले रंग बनाने चाहिए ताकि वो संतुल लेकिन उसे भी संतुलित होना चाहिए ताकि वो उनकी रचनात्मकता और उत्साह को बढ़ावा मिल सके और वो शांत वातावरण में अपनी पढ़ाई को भी कर सके।
1: रंगों का सही संयोजन घर की सुंदरता को कई गुना तक बढ़ा देता है, लेकिन बहुत अधिक रंगों का उपयोग घर की जो घर को ना असंतुलित भी कर देता है, यानी कि कुछ रंग ना आंखों में गड़ते ही चुपके
0: हैं और इससे घर भरा भरा दिखाई देता है
1: इसलिए सजावट की सादगी संतुलन और समझ से बनाए रखने के जरूरी भी होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि रंग केवल घर की दीवारों को सजाने का माध्यम नहीं बल्कि वे घर के वातावरण और अनुभव को भी प्रभावित करते हैं।
0: और हर रंग की अपनी खूबसूरती भी होती है और विशेषता भी होती है, क्योंकि रंगों का सही चुनाव घर को सिर्फ सुंदर ही नहीं बनाता बल्कि उसके हर कोने में खुशी, शांति और अपनापन भी भर देता है। और घर है ना महज़बीन एकदम फूलों के शहर में हो और खूबसूरत से रंग हो, उसमें रंग बिरंगे, तो उस घर की बात ही अलग होती है ना। तो क्यों ना ऐसे ही प्यारा सा गीत अपनी सखियों को सुनाया जाए।

0: तो सखियों, इस प्यारे से गाने के साथ अब हमारे जाने का वक्त भी हो गया है, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, और अपनी अब दो सखी खुशबू
1: और महजबीन को दें इजाजत।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 12:45 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं खड़िया लोकगीत। कलाकार हैं इग्नासियस किरकेट्टा और साथी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। 1 बजने को है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार। समाचार हम क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में श्री मोदी ने निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत

0: इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक और खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूरी पर यह दुर्घटना हुई। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. India is celebrating National Space Day today. The country observes the day to commemorate the historic soft landing of Chandrayaan 3 on the lunar South Pole in 2023, making India the first country to achieve the feat. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi

0: पर दी शुभकामनाएं। कहा विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने में अंतरिक्ष क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्यपाल ने कहा उपलब्धियां देश के लिए गर्व। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का सोशल मीडिया हैंडलर पुलिस जांच के दायरे में, रांची साइबर पुलिस ने नोटिस भेजा। झरिया के भगतडीह में फिर धंसी जमीन, दर्जनों घरों में दरारें, प्रभावित परिवारों को बीसीसीएल क्वार्टर में शिफ्ट करने की तैयारी। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया नमन, भाषा संस्कृति के संरक्षण में अमूल्य योगदान को किया याद। और देवघर में श्रावणी मेला की चौथी और अंतिम सोमवारी की तैयारी पूरी, श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से जलार्पण कराना प्राथमिकता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
1: हम सब ने मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। प्रोपल्शन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
2: आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर भारतीय वैज्ञानिकों एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की निरंतर प्रगति और उपलब्धियां देश के लिए गर्व का विषय हैं। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में सुधार की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच अब सोशल मीडिया पोस्ट भी पुलिस जांच के दायरे में आ गई है। रांची साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच नाम के सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित सोशल मीडिया संस्थान को नोटिस भेजा है। यह नोटिस बीएनएस की धारा 94 के तहत जारी किया गया है। इसी मामले में अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए संबंधित सोशल मीडिया संस्थान से अकाउंट संबंधित जानकारी मांगी गई है। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ लंबे समय से चलाए जा रहे सुरक्षा अभियानों का असर अब राज्य के उन इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है जिन्हें कभी नक्सल गतिविधियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के मुताबिक राज्य में नक्सल गतिविधियों के लिहाज से चिन्हित 7-8 प्रमुख हॉटस्पॉट अब काफी हद तक क्लियर हो चुके हैं। अब कोशिश है कि इन क्षेत्रों में नक्सली संगठन दोबारा अपना आधार न बना सकें।
3: नक्सल के जो 7 हॉटस्पॉट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, इस तरह से सब क्लियर हो गया, दोबारा नक्सल रिवाइव ना करे इसके लिए हम लोग कंटिन्यूस फोर्सेस तो वहाँ है। बूढ़ा पार्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चल ही रहा है जिसमें झारखंड सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का भी राशि दी गई है और डेवलपमेंट वर्क के साथ साथ वहाँ फोर्स भी रहेगी और इससे और फिर ग्रामीणों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, उनको रोजगार भी मिलेगा, इससे नक्सल पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा।
0: साइबर अपराध के खिलाफ देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। छापामारी अभियान के दौरान पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी करते थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा

0: समाचार एक्सएंडल एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्सएंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के झरिया में एक बार फिर भूधसान ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बस्ताकोला एरिया 9 अंतर्गत भगतडीह स्थित पुराने RSP कॉलेज के पीछे कामिनी कल्याण क्षेत्र में कल अचानक जमीन धंसने से अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद इलाके के दर्जनों घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। मामले की सूचना मिलने पर बस्ताकोला एरिया के महाप्रबंधक SK गायकवाड़ और धनबाद के मेयर संजीव सिंह मौके पर पहुंचे। दोनों ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली।
1: के एक घर में 2-3 कमरों में दरार आई, तो ये कहना कि ये घटना ब्लास्टिंग के कारण हुई है ये मानने योग्य नहीं। हमारी टीम जाके उन लोगों के प्रभावित व्यक्तियों के प्रभावित घरों से सर्वे कर लेगी और उनको नोटिस जारी कर दिया जाएगा और उनको जो स्कीम है उसके तहत उनको जो सुविधाएं प्रदान की जानी है वो उनको प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।
0: आज पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है, आदिवासी भाषा कला और संस्कृति के उत्थान के पथ प्रदर्शक महान शिक्षाविद लेखक और कलाकार पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की जयंती पर शत शत नमन। वहीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि झारखंड की माटी आदिवासी संस्कृति भाषा और लोक परंपराओं को देश दुनिया में पहचान दिलाने वाले डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का योगदान सदैव अमर रहेगा। रांची में पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के मुंडारी भाषा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजीव मनोहर ने कहा कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे। वे भाषाविद, संगीतकार, शिक्षाविद और लोक कलाकार के रूप में अपनी अलग पहचान रखते थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके बहुमुखी व्यक्तित्व और भाषा संस्कृति के संरक्षण में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,51,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,54,000 रुपये प्रति किलो है। श्रावणी मेला की चौथी और अंतिम सोमवारी के सफल एवं सुरक्षित संचालन को लेकर देवघर में जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से जलार्पण कराना प्राथमिकता है।
2: हर कोई यही बोल रहा है कि फोर्थ मंडे के लिए बहुत उत्साहित है, बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा है। बीच में एक समस्या आई थी जब कुछ मजिस्ट्रेट्स हमारे यहाँ से चले गए थे, बट अभी स्टे लगने की वजह से हमारे पास वो समस्या नहीं है और हम लोगों ने जो सुरक्षित मजिस्ट्रेट्स थे उनको भी हम लोगों ने यूज करने का प्लान कर लिया था। तो बेसिकली किसी भी तरीके से हमारी तैयारी सोमवार को लेकर कम नहीं है।
0: और अब मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर राज्य के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है। कई जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर दी शुभकामनाएं। कहा, विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने में अंतरिक्ष क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्यपाल ने कहा, उपलब्धियां देश के लिए गर्व। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच का सोशल मीडिया हैंडलर पुलिस जांच के दायरे में, रांची साइबर पुलिस ने भेजा नोटिस। झरिया के भगतडी में फिर धंसी जमीन, दर्जनों घरों में दरारें, प्रभावित परिवारों को BCCL क्वार्टर में शिफ्ट करने की तैयारी। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया नमन, भाषा संस्कृति के संरक्षण में अमूल्य योगदान को किया याद। और देवघर में श्रावणी मेला की चौथी और अंतिम सोमवारी की तैयारी पूरी, श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से जलार्पण कराना प्राथमिकता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:21 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ख्याल अभोगी कानड़ा। कलाकार हैं गिरिजा देवी।

हेलो, आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:45 हो चुके हैं। ये वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र और मिताली सिंह की गायी गजलें। आइए सबसे पहले सुनते हैं मलिक गुमनाम की लिखी गजल। फनकार हैं भूपेंद्र सिंह।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, 2 बजने को है। आइए एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए।

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी कि कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सज्जित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन

0: व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नये क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। IMD ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहंडी में बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहंडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि

0: तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, होर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रिजाई ने होर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
2: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रहीं। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जय भारती का। जय भारती कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं AR रहमान के स्वर में स्वदेश फिल्म का गीत। इस गीत को कलमबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण।

आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने और फिल्म का नाम है ताल।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। और आइए अब इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत वरुण जैन और शिल्पा राव की आवाजों में। इस गीत की धुन बनाई है सचिन जीकर ने और फिल्म का नाम है स्त्री 2।

0: वरुण जैन और शिल्पा राव के गाए इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में ऐसा अनुकूल माहौल तैयार किया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में करियर और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में कहा कि लागत के मामले में भारत की स्थिति काफी बेहतर है और देश में कुशल प्रतिभाओं के साथ जोखिम उठाने की मजबूत क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खूबियां भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता प्रदान करती है।
1: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
0: उच्चतम न्यायालय झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई से स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच राज्य सीआईडी से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने प्रश्न पत्रों की छपाई, कोडिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण तथा ओएमआर के संग्रह, स्कैनिंग और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया की जांच का अनुरोध किया है। मूल ओएमआर, सीसीटीवी फुटेज और सर्वर ऑडिट रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग करते हुए कहा गया है कि पहले स्वतंत्र जांच से गड़बड़ी का प्रभाव तय हो, उसके बाद परीक्षा परिणामों पर निर्णय लिया जाए। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत

0: अपात्र राशन कार्ड लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। जांच में राज्य में 6,29,973 लाभुक अपात्र पाए गए हैं। इनमें से करीब 1,63,000 यानी कि 26% लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने शेष करीब 4,66,000 मामलों में कार्रवाई 25 अगस्त तक पूरी करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने 31 अगस्त तक अपात्र नाम हटाने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर राज्य के खाद्यान्न आवंटन पर असर पड़ने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में स्थानीय विधायक राज सिन्हा ने आज वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार से मुलाकात कर नाराजगी जताई। विधायक ने छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि छात्रों को अन्याय के खिलाफ विरोध और अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है।
1: झारखंड की वर्तमान सरकार जो है वह हम में आज डूब चुकी है और जैसे भी हो इन प्रकारों चाहे तो प्रशासन के द्वारा चाहे अपने भेजे हुए सामाजिक तत्वों के द्वारा छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास सरकार ने किया दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो यही आग्रह करूंगा सरकार से कि चेत जाए संभल जाए।
0: रांची पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्राप्त किसी भी समाचार या सूचना को बिना सत्यापन के प्रसारित नहीं करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि असामाजिक तत्व झूठी और भ्रामक खबरों के जरिए घृणा वैमनस्य और तनाव फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी सूचनाएं कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। पुलिस ने नागरिकों से संवेदनशील या विवादित सूचनाओं की सत्यता और स्रोत की जांच करने तथा अफवाहों से बचने को कहा है। भ्रामक या तनाव उत्पन्न करने वाली सामग्री मिलने पर उसे साझा करने के बजाय पुलिस या प्रशासन को सूचित करने और कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की गई है। राजधानी रांची के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक निजी ऑटोमोटर वर्कशॉप में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से वर्कशॉप में खड़े 6 वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं। कुछ ही पलों में हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ஸ்வயமிதி கட்டுப்படை பாரதிய சேனா.
1: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत श्रेया घोषाल और पेपॉन की आवाजों में। इस गीत की धुन बनाई है शांतनु मोइत्रा ने और फिल्म का नाम है बॉबी जा।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं और ये वक्त है प्रोग्राम रांची मेलोडीज का। रांची मेलोडीज लेकर हम आपसे मुखातिब होंगे कुछ ही पलों में।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: சுயம் இனி கட்டுப்படு பாரதிய சேனா.
1: आकाशवाणी रांची पर वक्त हो चला है उस खूबसूरत सफर का जिसे हम रांची मेलोडीज कहते हैं, और आज की मेलोडीज उस शिव शक्ति के नाम जिनकी वंदना आराधना इन दिनों हम सब कर रहे हैं सावन के पावन महीने में. आज की रांची मेलोडीज में शिवशंकर के योग का मौन, जटाओं से बहती शीतल धारा, नीलकंठ की सहिष्णुता, हिमालय की चोटी की स्थिरता और डमरू की गूंज सबका समागम है. जब डमरू की पहली ध्वनि गूंजती है तब कैलाश की शांति में ऊर्जा का ज्वार उठता है, और जब स्वयं महादेव अपने चरणों से सृष्टि की धरती को स्पंदित करते हैं तब जन्म लेता है तांडव. तांडव केवल एक नृत्य नहीं, यह है सृजन, संरक्षण और संहार की वह दिव्य लय जिसमें पूरी सृष्टि गतिमान है. तांडव का एक रूप हमें रौद्र शिव का दर्शन कराता है, वो शक्ति जो अधर्म और अहंकार का अंत करती है. तो वहीं तांडव की लय हमें ये भी समझाती है कि विनाश हमेशा भयावह नहीं होता, कभी कभी विनाश ही नव निर्माण की पहली सीढ़ी होता है. महादेव का तांडव जैसे कहता है, जो बीत गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे फिर से गढ़ो, और जो आने वाला है उसका स्वागत पूरे साहस से करो. और जब डमरू की ध्वनि के साथ महादेव का तांडव आरंभ होता है तो लगता है मानो स्वयं प्रकृति कह रही है, परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन की सबसे बड़ी लय है. तो आइए उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, उस रौद्र सौंदर्य को नमन करें.

शिव, जो आरंभ भी हैं और अंत भी, जो स्थिर भी हैं और हर गति के आधार भी, जटाओं में गंगा लिए, त्रिनेत्र में सत्य लिए।

और हृदय में करुणा लिए, सरल ऐसे कि केवल जल से ही जल हो जाते। शिव हमें सिखाते हैं कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संतुलन है। कहते हैं जब संसार की सारी शक्तियां एक ओर हों और दूसरी ओर केवल महादेव का नाम, तो विश्वास रखिए राह अपने आप बन जाती है। महादेव जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, कंठ में विष है और हृदय में अपार करुणा, ये कैलाश पर विराजते हैं, लेकिन अपने भक्तों के सच्चे भाव में भी उतनी ही सहजता से मिल जाते हैं। शिव का अर्थ केवल संहार नहीं, शिव का अर्थ है कल्याण।

शिव किसी एक युग के एक काल के नहीं, बल्कि शिव तो हर युग के हैं। आज के इंसान को भी उतनी ही जरूरत है शिव के धैर्य की, शिव के वैराग्य की और शिव की स्थिरता की, उनके ध्यान की, उस विचार की जो याद दिलाए कि जब जीवन डगमगाए तो शिव बनो अडिग। शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि संसार सुरक्षित रह सके। यही तो शिवत्व है, दूसरों के जीवन में प्रकाश भरने के लिए स्वयं कठिनाइयों को स्वीकार कर लेना। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, अपने भीतर का संतुलन मत खोइए। क्रोध आए तो धैर्य रखिए, संकट आए तो विश्वास रखिए, और सफलता मिले तो अहंकार से बचिए। क्योंकि शिव के हाथ में त्रिशूल केवल अस्त्र नहीं, वो याद दिलाता है कि जीवन के तीनों आयाम, भूत, वर्तमान और भविष्य, हमारे भीतर संतुलित होने चाहिए। और डमरू की ध्वनि जैसे कहती है, हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छुपी होती है।

कैलाश की ऊंचाइयों पर शिव तप में लीन रहते हैं, लेकिन उस तप को पूर्णता देती है माता पार्वती की साधना, उनका धैर्य और उनका अटूट विश्वास। पार्वती सिर्फ शिव की अर्धांगिनी नहीं, बल्कि वो उनकी शक्ति हैं, जो त्याग को जीवन देती हैं और वैराग्य को अर्थ। शिव हमें सिखाते हैं रुकना, ठहरना और स्वयं से जुड़ना। पार्वती सिखाती हैं संभलना और प्रेम से आगे बढ़ना। शिव का डमरू जीवन की लय तय सिखाता है और पार्वती का आंचल उस लय को सुरक्षा देता है। यानी एक ओर त्रिनेत्र की तेज दिव्यता तो दूसरी ओर ममता की शीतल छाया। जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति हैं, और जहाँ शक्ति हैं वहीं सृष्टि है।

आज की रांची मेलोडीज के मेलोडियस भक्ति में धुनों का सफर बस यहीं तक। अगली बार कुछ और खूबसूरत गीतों और खूबसूरत किस्सों के साथ मुखातिब होंगे। अब आज के इस सफर से अपनी दोस्त शिल्पी को दीजिए इजाजत।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में ऐसा अनुकूल माहौल तैयार किया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में करियर और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में कहा कि लागत के मामले में भारत की स्थिति काफी बेहतर है और देश में कुशल प्रतिभाओं के साथ जोखिम उठाने की मजबूत क्षमता भी है। उच्चतम न्यायालय झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई से स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई करेगा। याचिका में परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच सीआईडी से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने प्रश्न पत्रों की छपाई, कोडिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण तथा ओएमआर के संग्रह, स्कैनिंग और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया की जांच का अनुरोध किया है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र राशन कार्ड लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। जांच में राज्य में 6,29,973 लाभुक अपात्र पाए गए हैं। इनमें से करीब 1,63,000 यानी 26% लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने शेष करीब 4,66,000 मामलों में कार्रवाई 25 अगस्त तक पूरी करने का निर्देश दिया है। रांची पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्राप्त किसी भी समाचार या सूचना को बिना सत्यापन के प्रसारित नहीं करने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि असामाजिक तत्व झूठी और भ्रामक खबरों के जरिए घृणा, वैमनस्य और तनाव फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। राजधानी रांची के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक निजी ऑटो मोटर्स वर्कशॉप में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से वर्कशॉप में खड़े 6 वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4:02 हो चुके हैं और ये वक्त है बाल श्रोताओं के कार्यक्रम बाल सभा का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंदा मामा दूर नहीं, इस विषय पर चर्चा, राखी का त्योहार। जानकारी में आप सुनेंगे ओणम के त्योहार के बारे में और प्रेरक व्यक्तित्व होंगे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं अवधेश कुमार और शिल्पी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की है।

0: नीले नीले नभ के ऊपर चांदी जैसी थाली, कभी गोल मटोल चंदा, कभी टुकड़ासा लगता, कभी छिप जाए बादल में, कभी तारों संग चमकता।
1: सूरज की किरणें लेकर धरती को देता उजियारा, रात के नीले आंगन में लगता कितना प्यारा।
0: तो बच्चों, आज रविवार है यानी छुट्टी का दिन, तो चलिए किताबों के पन्नों से निकलकर चलते हैं उस दुनिया में जहां रात के आकाश में टिमटिमाते हैं अनगिनत सितारे और उनके बीच मुस्कुराते हैं हमारे चंदा मामा।
1: हाँ बच्चों, माँ की लोरियों में चंदा मामा, किस्से कहानियों में चंदा मामा की बातें, और चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, ये गीत तो आप लोगों ने भी सुना होगा बचपन में, जब आप खाना खाने में आनाकानी या नखरे दिखाते हैं।
0: भैया, मुझे लगता है शायद ही किसी का बचपन ऐसा बीता होगा जिसने ये लोरी न सुनी हो। क्यों बच्चों, सही कहा ना?
1: अच्छा बच्चों, कभी आपने सोचा है कि चांद को हम मामा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी कहानियों और लोक गीतों में चांद को एक परिवार के सदस्य की तरह माना गया है।
0: सच कहूँ तो मुझे यही लगता था बचपन में कि ये हमारे सच के मामा हैं। कभी वो दादी की लोरियों में आते तो कभी खिड़की से झांक कर मुस्कुराते। पूर्णिमा के दिन तो वो हमारे आंगन में बिराजते। सच, बचपन के दिन और वो बातें हमेशा याद रहती है और साथ रहती है।
1: बच्चों, चांद को मामा कहने के पीछे पौराणिक मान्यताएं और इसके पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले भौगोलिक कारण दोनों शामिल हैं। समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों की उत्पत्ति हुई थी।
0: हाँ बच्चों, इस रिश्ते से चंद्रमा माता लक्ष्मी के भाई हुए। चूंकि धरती को हम माँ कहते हैं, है ना, इसलिए उनकी बहन लक्ष्मी के भाई हमारे मामा हुए, है ना बच्चों?
1: बच्चों, भौगोलिक कारण भी बताते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक लौता प्राकृतिक उपग्रह है और ये लगातार हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है।
0: बच्चों, आपको मालूम होगा चंद्रमा के पास कोई रोशनी नहीं होती, वह तो सूरज की रोशनी के परावर्तन के कारण चमकता है।
1: और चांद का आकार हमेशा एक जैसा नहीं होता बच्चों, पृथ्वी का चक्कर लगाने के कारण इसका आकार रोज बदलता है, आपने देखा होगा।
0: बच्चों, एक वक्त था जब चांद की सिर्फ बातें होती थी, पर आज चंद्रमा की सतह पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भी फहरा रहा है। भारत ने 23 अगस्त 2023 को इतिहास रचा जब उसका चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर के डिप्लॉयमेंट के साथ चंद्रयान 3 मिशन सफल हो गया। इसलिए बच्चों, यानी अब चंदा मामा जो हमने कहा कि दूर के, वो दूर के नहीं हैं, बल्कि विज्ञान ने साबित कर दिया कि वे केवल कल्पना की दुनिया में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी का पड़ोसी भी हैं।
1: तो बच्चों, अब चंद्रमा हमारे लिए दूर का चीज नहीं रह गया है क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 वहां तक पहुंच चुका है। बच्चों, चंदा मामा की बात करने से एक बात और याद आने लगी, जरा सोचिए वो कौन सी बात होगी।
0: और अपने अपने हाथ भी उठाइएगा। भैया, लगता है सभी को यह रिश्ता पता है, यानी माँ के प्यारे भाई जिसे हम प्यार से कहते हैं चंदा मामा।
1: हाँ बच्चों, ये त्योहार आता है तो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ, मिठास और यादें भी लेकर आता है। वैसा ही है रक्षाबंधन, जिसे हम प्यार से

0: राखी भी कहते हैं।
1: बच्चों, रंग बिरंगी राखी, मिठाई की खुशबू, भाई बहन की नोक झोंक, साथ साथ उम्मीद रहती है कि बहन को इस बार उपहार में क्या मिलेगा।
0: ये त्योहार केवल भाई की कलाई पर राखी बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्यार, विश्वास, स्नेह तथा एक दूसरे के सम्मान का संदेश देता है।
1: और बहन चाहती है कि उसका भाई जहाँ भी रहे वो सुरक्षित रहे। इसके लिए कई दिनों से सोचती भी है। इस बार सोचती है कि कैसी राखी भेजूं जो सबसे अलग हो। और बहन यह भी सोचती है कि रेशमी धागों से बनी राखी भेजूं या जरी वाली जो सबसे सुंदर हो। बहन की चाह रहती है कि उसकी राखी भी समय से पहुंच जाए उसके भाई के पास।
0: बच्चों, राखी की डोर छोटी हो सकती है, लेकिन उसमें छिपा प्यार बहुत बड़ा और रक्षा सूत्र का काम करता है। वैसे बचपन में भाई बहन लड़ते भी हैं, रूठते भी हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे से शिकायत भी करते हैं, और उनकी शिकायत माँ तक पहुँचाते भी हैं। लेकिन जब राखी का त्यौहार, राखी बंधन का त्यौहार आता है, तो मनुहार भी लगाते हैं।
1: और कहते हैं, रेशम की डोरी छोटी सी पर प्यार बहुत गहरा है, भाई बहन का साथ हो तो हर मौसम सुनहरा है।
0: रिश्तों को हम खूब संवारें, मन में प्रेम बरसाएं, राखी के इस पावन पर्व पर भाई बहन का मन हर्षाएं।
1: तो बच्चों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि 28 अगस्त को राखी आने वाली है ना? तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने रिश्तों की इस प्यारी डोर को हमेशा मजबूत बनाए रखिए।
0: तो चलिए, इसी प्यार और मनोहार के साथ, इसी मजबूती के साथ, अब हम आपको सुनवाते हैं एक बाल गीत।

0: भैया बच्चों को हमने बहुत सुंदर गीत सुनवाया और अब बच्चों आपकी बारी है कि आज आप क्या सुनाएंगे अपने मुख से।
1: तो चलिए दीदी, अब बच्चों की बारी है तो बच्चों से सुन

0: हैं।
1: तुम्हारा नाम क्या है?
2: मेरा नाम गायत्री कुमारी सिंह है।
1: और ये बताओ कि तुम किस क्लास में पढ़ती हो?
2: मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ।
1: अच्छा, आज तुम क्या सुनाओगी बताओ?
2: मैं आज चंदा मामा के बारे में सुनाऊंगी।
1: तो सुनाओ।
2: जब मैं छोटी थी तब दादी मुझे रोज रात को यही लोरी सुनाती थी, चंदा मामा दूर के, और मैं आसमान की तरफ देखती और सोचती, वाह चंदा मामा कितने मजे में हैं, रात भर अकेले बैठकर रबड़ी जलेबी खाते हैं। दादी तो यह भी कहती थी कि वहाँ एक सुंदर परी रहती है जो मलमल के कपड़े बुनती है। लेकिन फिर मैं बड़ी हुई, कक्षा 5 में आई, हमारी साइंस मैम ने मेरी सारी फेरी टेल का सच खोल दिया। मैम ने कहा, बेटा चांद पर कोई परी नहीं है, वहां तो बस धूल गड्ढे और बहुत ठंड है। मैं सोचने लगी, अरे रे फिर तो चंदा मामा बहुत अकेले हो गए होंगे। लेकिन फिर हमारे देश के इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा, चिंता मत करो, अगर चंदा मामा दूर के हैं तो क्या हुआ, हम भारत वाले हैं, उनसे मिलने खुद पहुंच जाएंगे। और फिर शुरू हुआ असली रोमांच। 23 अगस्त यानी आज के दिन जब पूरा देश सांसें थामे बैठा था, तब हमारे चंद्रयान 3 ने चांद की दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर उतरकर इतिहास रच दिया। हमारा विक्रम लैंडर चांद पर उतरा और उसके पेट में से निकला हमारा नटखट प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर चांद की जमीन पर ऐसे चला जैसे कोई बच्चा अपने मामा के घर पहली बार खेलने जाता है। और चलते चलते उसे चांद की छाती पर हमारे तिरंगे और इसरो की ऐसी छाप छोड़ी जो कभी नहीं मिटेगी। आज हमारा भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चांद की साउथ पोल पर तिरंगा फहराया है। अब दादी की वो पुरानी लोरी बदल चुकी है, अब हम कहते हैं चंदा मामा दूर के नहीं रहे अब दूर के, एक उड़ान में पहुंचेंगे दिन आ गए हैं गुरूर के। अब चंदा मामा सिर्फ दूर के नहीं रहे, अब तो चंदा मामा बस एक टूर के हैं। बहुत जल्द हम सब वहां छुट्टियां बिताने जाएंगे। भारत माता की जय।
1: वाह बहुत सुंदर। अच्छा ये बताओ कि तुम कोई और भी कविता सुनाओगी, क्योंकि तुम्हें पता है अभी एक खास पर्व आने वाला है।
2: हाँ मुझे पता है, वो है रक्षाबंधन।
1: तो फिर सुनाओ।
2: राखी का त्योहार है आया, खुशियों का संसार है लाया, बहना ने थाली सजाई है, प्यार की राखी लाई है, पर सीमा पर खड़ा है भाई, घर ना आ पाया इस बार सिपाही, माँ की आंखें राह निहारी, बहना मन ही मन उसे पुकारे, भैया तुम सीमा पर रहना, भारत माँ की रक्षा करना, मेरी राखी जब तुम पाओ मुझको अपने पास ही पाओ, बर्फीली चोटी हो या रेगिस्तान, हर पल डटे हमारे जवान, आंधी आए बरसे पानी, नहीं रुके भारत की सेनानी, बहना ने राखी भेजी प्यार से, संग दुआएं भेजी दुलार से, मेरे भैया तुम मुस्काना, जल्दी वापस घर आ जाना, सैनिक बोला प्यारी बहना, तुम सदा खुश और हंसती रहना, तुम्हारी रक्षा मेरा मान, पर पहले मेरा हिंदुस्तान, राखी का यह पावन धागा, देश प्रेम का बने उजाला, हर सैनिक को करे प्रणाम, जो करता भारत माँ के नाम, राखी आज जवानों के नाम, उनके साहस को सत सत प्रणाम, सीमा के वीरों की एक ही पहचान, भारत माता की आन बान और शान, जय हिंद।
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
2: धन्यवाद।
1: तुम्हारा नाम क्या है?
3: मेरा नाम सुभांशी श्रेय है।
1: और किस क्लास में पढ़ती हो तुम?
3: मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ।
1: अच्छा तुम आज क्या सुनाओगी?
3: आज चंदा मामा का दिन है, इसलिए मैं अपने बचपन की बात आपको बताना चाहती हूँ।
1: फिर बताओ।
3: बचपन में जब हम रोते थे तो मम्मी कहती थी, चुप हो जाओ वो देखो चंदा मामा, और दादी सुनाती थी, चंदा मामा दूर के पोहे पकाए गुड़ के। लेकिन फिर क्या हुआ, हम बड़े हुए और हमारे देश के इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा, अरे भाई कब तक सिर्फ दूर से मामा मामा कहते रहोगे, चलो अब मामा के घर चलकर चाय नाश्ता करते हैं। और फिर भारत ने भरी ऐसी उड़ान कि सीधे पहुंच गए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। 23 अगस्त यानी आज के दिन जब चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की तो चंदा मामा भी बोल उठे होंगे, वाह भाई भारत तुम तो सच में घर ही आ गए। हमारा चुलबुला प्रज्ञान रोवर जब लैंडर से बाहर निकला तो उसने चांद की मिट्टी पर तिरंगे की ऐसी छाप छोड़ी कि अब आसमान से भी चमकता है मेड इन इंडिया। तो दोस्तों अब कहानी बदल चुकी है, पहले थे चंदा मामा दूर के, अब है चंदा मामा बस एक टूर के। बहुत जल्द हम सब चांद पर जाकर कहेंगे, मामा एक प्लेट गरम गरम पुए लगाना, जय हिंद जय इसरो।
1: बहुत सुंदर। और कुछ कविता सुनाना चाहोगे तुम?
3: हाँ मैं रक्षाबंधन में कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है राखी का त्योहार।
1: फिर सुनाओ।
3: तुमसे एक अनूठा बंधन तुम्हें बांध रेशम की डोर, बढ़ जाती है हिम्मत मेरी पड़ जाते तुम बिन कमजोर। तुमसे मेरा रिश्ता भाई मुझे जान से प्यारा है, तू सबसे प्यारा है मुझको।

0: जग से न्यारा है। इस रेशम की डोरी से बांधे रखूंगी जीवन भर, सदा प्रार्थना तेरे खातिर अमर करे तुझे ईश्वर। स्वस्थ सुखी जीवन हो तेरा, सुख समृद्धि से भरपूर, दुख की काली छाया से ईश्वर रखे हमेशा दूर। सजा कलाई अपनी जल्दी बांध मेरी राखी को तू, ईश्वर तुझको सारे सुख दे सदा, दुआ ये मैं मांगू।
1: बहुत सुंदर,
0: धन्यवाद।
2: आपका नाम क्या है और क्या सुनाएंगे अपने दोस्तों को?
3: मेरा नाम शिवांश भारद्वाज है, मैं पहली कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने एक मजेदार कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है होमवर्क। होमवर्क आया झूम झाम, बोला कर लो मेरा काम। मैंने कहा जरा ठहरो भाई, पहले खेलू फिर पढ़ाई। पेंसिल बोली मुझे चला, नोटबुक बोला मुझे सजाओ, इरेजर बोला गलती मिटाओ, सब मिलकर मुझको समझाए। मैंने सोचा बात है सच्ची, आदत होनी चाहिए अच्छी। बैग से अपनी पुस्तक निकाली, खुल गई ज्ञान की सुंदर हरियाली। गणित के प्रश्न बड़े थे न्यारे, कुछ आसान कुछ थे भारी। हिंदी की कविता गुनगुनाई, अंग्रेजी की स्पेलिंग दोहराई। कभी कभी मन थोड़ा घबराता, खेल का मैदान याद दिलाता। फिर मम्मी प्यार से समझाती कि मेहनत करके ही आगे जाते। पढ़ाई और खेल का होता मेल, यही सफलता की सच्ची रेस। रोज समय पर काम करूंगा, आलस से दूर रहूंगा, धन्यवाद।
2: वाह, बहुत सुंदर कविता। आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम माही पांडे है, मैं कक्षा 3 में पढ़ रही हूँ। आज मैं एक सुंदर सी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ऐसे सूरज आता है। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल। लाल रंग बिखरता है, ऐसे सूरज आता है। गाती हैं चिड़िया सारी, खिलती हैं कलिया प्यारी। दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती नहीं न रहती तब। धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है। सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है, धन्यवाद।
2: बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। और आप क्या सुनाएंगे? पहले अपना नाम बताइए।
5: नमस्कार, मैं नव्या गुप्ता आज श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जो बीत गई। यह कविता मुझे बेहद पसंद है। जब मैं दुखी या हताश होती हूँ तो इस कविता को अवश्य सुनती हूँ। यह कविता मुझे एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। यह कविता हमें आगे बढ़ते रहने और जीवन की अस्थिरता को अपनाने का एक सशक्त संदेश देती है। यह कविता कुछ इस प्रकार है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई, मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। जो माद कता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई,
2: जो बीत गई सो बात गई।
6: बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। तो अब दीदी, अब हम क्या बच्चों को जानकारी देने वाले हैं?
1: भैया, आज हमारे पास एक और जानकारी है बच्चों के लिए, वो भी खास त्योहार से जुड़ी है। हाँ बच्चों, आपने ओणम त्योहार का

0: नाम सुना है, सुना होगा ना? तो चलिए जानते हैं इस पर्व के बारे में। बच्चों, ओणम मुख्य रूप से केरल का प्रमुख त्योहार है और यह मलयाली लोगों का पारंपरिक पर्व है। इस समुदाय के लोग बड़े ही उत्साह से मनाते हैं, चाहे वो भारत में रहें या विदेश में। चूंकि हम भारत में रहते हैं, इसलिए हर एक राज्य की जो पर्व है उसकी महत्ता को हमें जानना चाहिए, खासकर बच्चों आप लोगों को।
1: तो बच्चों, ओणम का जो संबंध है वो राजा महाबली की लोक कथा से माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे।
0: हाँ बच्चों, ओणम के अवसर पे महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते थे, इसलिए लोग उनका स्वागत खुशी और श्रद्धा के साथ करते थे।
1: इसी खुशी में घर के आंगन में फूलों से सुंदर पुकल्लम यानी फूलों की रंगोली बनाई जाती है,
0: और साथ ही पारंपरिक ओणम साधा तैयार की जाती है, जिसमें केले के पत्ते पर कई तरह के शाकाहारी व्यंजन परोसे जाते हैं।
1: केरल में बल्लम कली यानी प्रसिद्ध नाव दौड़ भी ओणम उत्सव का आकर्षण बनता है।
0: बिल्कुल भैया, और साथ ही साथ लोक नृत्य, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं केरल में।
1: तो बच्चों, कभी केरल घूमने जाएं तो वहां की संस्कृति को भी देखें। तो बच्चों, ये थी जानकारी ओणम पर्व के बारे में, और हर हफ्ते हम आपको एक जानकारी देते हैं किसी प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में।
0: बच्चों, भारत ने दुनिया को कई महान खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन जब बात हॉकी की होती है तो सबसे पहले जिन महान खिलाड़ियों का नाम याद आता है उनमें मेजर ध्यानचंद का नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है। उनकी हॉकी खेलने की कला इतनी अद्भुत थी कि उन्हें प्यार से हॉकी का जादूगर कहा गया। उनका जीवन केवल खेल की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन, समर्पण, देश प्रेम और विनम्रता की भी प्रेरक कहानी है।
1: बच्चों, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता सेना में थे और इसी कारण उनका बचपन अलग अलग स्थानों पर बीता। छोटी उम्र में ध्यानचंद का पूरा ध्यान हॉकी पर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ने लगी।
0: हाँ बच्चों, वे भारतीय सेना में शामिल हुए। सेना में रहते हुए उन्हें हॉकी खेलने और अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिला। उन्होंने हॉकी को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना, बल्कि इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया।
1: ध्यानचंद के जीवन में अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व था। बच्चों, वे अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करते थे। उनका मानना था कि केवल प्रतिभाशाली होना काफी नहीं है, उस प्रतिभा को अभ्यास के द्वारा मजबूत बनाना भी जरूरी है।
0: ध्यानचंद के नाम के साथ जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी भी है। कहा जाता है कि वे दिन में अपनी ड्यूटी के बाद रात में चांदनी में हॉकी का अभ्यास किया करते थे। इसी कारण उनके साथी उन्हें चंद कहकर बुलाने लगे, और बाद में उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यान चंद के रूप में प्रसिद्ध हो गया।
1: बच्चों, ये प्रसंग ये सीख देती है कि जब किसी को काम सीखने का जुनून हो तो इंसान समय और परिस्थितियों की परवाह किए बिना मेहनत करता है। ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से गेंद पर इतना शानदार नियंत्रण रहता था कि दर्शकों को लगता था जैसे गेंद उसकी स्टिक से चिपकी हुई है। वे मैदान पर बहुत तेजी से दौड़ते हुए गेंद को अपने नियंत्रण में रखते थे और सही समय पर गोल कर देते थे।
0: उनका खेल देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मैदान में पहुंचते थे। उनके शानदार प्रदर्शन के कारण पूरी दुनिया में भारतीय हॉकी की प्रतिष्ठा बढ़ी।
1: उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन तीन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता।
0: विशेष रूप से 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। वे भारतीय टीम के कप्तान थे और उनके नेतृत्व में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया।
1: तो बच्चों, उनकी उपलब्धियों ने यह साबित कर दिया कि भारत के खिलाड़ी भी दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। ध्यानचंद के लिए व्यक्तिगत प्रसिद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण था भारत का सम्मान। वे जब मैदान पर उतरते थे तो उनके मन में देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की भावना होती थी।
0: बच्चों, उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपने काम में केवल अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। यदि हमारी मेहनत से हमारे परिवार, समाज या देश का नाम रोशन होता है

0: तो उससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है।
1: इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी ध्यानचंद घमंडी नहीं हुए। वे सरल और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अपने खेल को बेहतर बनाने पर ध्यान देते थे और अपनी उपलब्धियों का दिखावा नहीं करते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी। बच्चों, सच्ची महानता केवल बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में नहीं, बल्कि सफलता मिलने के बाद भी विनम्र बने रहने में है।
0: बच्चों, मेजर ध्यानचंद का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहली सीख कि मेहनत करना चाहिए, केवल प्रतिभा के भरोसे सफलता नहीं मिलती, लगातार अभ्यास और मेहनत भी जरूरी है।
1: हाँ बच्चों, आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए और लगातार अभ्यास करना चाहिए। समय का सही उपयोग और नियमित अभ्यास हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। और तीसरी सीख है
0: धैर्य। बच्चों, सफलता तुरंत नहीं मिलती, कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए।
1: और चौथी सीख है बच्चों कि हॉकी एक टीम गेम है। ध्यानचंद जानते थे कि अकेले कोई खिलाड़ी मैच नहीं जीत सकता, इसलिए पूरी टीम के सहयोग से ही बड़ी सफलता हासिल होती है।
0: साथ ही साथ विनम्रता भी जरूरी है। जीवन में कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न मिले, हमें अपने व्यवहार में सरल और विनम्र रहना चाहिए बच्चों।
1: और अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करना ही देश की सेवा है बच्चों।
0: बच्चों, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश में खेलों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है और खिलाड़ियों की उपलब्धियों का सम्मान भी किया जाता है।
1: बच्चों, ध्यानचंद के पास भी दो हाथ दो पैर और हमारे जैसे ही दिन के 24 घंटे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसे मेहनत और अनुशासन से निखारा। इसलिए अगर आपको पढ़ाई, खेल, संगीत, चित्रकला या किसी भी दूसरे क्षेत्र में रुचि है तो उसे गंभीरता से अपनाइए। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, गलतियों से सीखिए और कभी ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता। तो बच्चों, ये थे आज के हमारे प्रेरक व्यक्तित्व मेजर ध्यानचंद। और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है दीदी, तो बच्चों से हमें विदा लेनी होगी। तो चलते चलते हम बच्चों को बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो गौरव कुमार पांडे की थी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।
2: जय हिंद बच्चों।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के सूत्रधार थे अवधेश और शिल्पी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे के थे। ये प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी हम दे दें।

अब से बस कुछ ही देर में यानी 4:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुन पाएंगे 5 बजे। युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवावाणी का समय होगा 5:02 पर। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगे निकिता और तरनजीत। प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की होगी। श्रमिक भाइयों को संबोधित कार्यक्रम श्रमिक लोक आप सुन सकते हैं 5:30 पर, श्वेता आर्य और पूजा बोस के साथ। प्रस्तुति गौरव कुमार की होगी। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर खेती बारी। 6 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे 7 बजे। जिले में आजकल 7:11 पर और हिंदी साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल 7:15 पर।

अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण समय होगा 10 बजे। इसके अंतर्गत आप सुन पाएंगे मुंबई के टॉप श्रेणी के कलाकार विदुषी प्रतिमा तिलक का ख्याल गायन। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। अंग्रेजी में समाचार आप सुन पाएंगे 11:05 पर और 11:10 पर आज की सभा का समापन होगा।

तो ये थी आज की सभा में, संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की विवरणी। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम।

0: दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़ से थोड़ी राहत लेने की शाम, परिवार के साथ कुछ सुकून के पल बिताने की शाम, और उन खूबसूरत गीतों के नाम जो कभी हमारे दिल की आवाज बन जाते हैं। मैं हूं आपका साथी मनीष, और हम साथ सुनेंगे संगीत की ऐसी मधुर सरगम जिसमें होंगे यादों के रंग, मोहब्बत की खुशबू, रिश्तों की मिठास और जिंदगी के कुछ अनमोल एहसास। तो आइए कुछ देर के लिए दुनिया की उलझनों को किनारे रख देते हैं और संगीत की इस खूबसूरत दुनिया में चलते हैं।
1: न झटको जुल्फ़

क्या खूब कहा है गया है। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, वे महसूस किए जाते हैं, और शायद इसलिए कुछ धुनें बरसों बाद भी हमारे भीतर वैसे ही ताज़ा रहती हैं।

रविवार का दिन अपने आप में कुछ अलग होता है। सुबह दो देर तक सोने का मन, घर में चाय की खुशबू, परिवार के साथ बैठकर बातें, और शाम होते होते मन कहता है चलो अब थोड़ा संगीत सुना जाए। और जब संगीत अच्छा हो तो शाम अपने आप सुहानी हो जाती है। आप जहां भी हैं, अपने घर में, सफर में, किसी दुकान पर, खेत खलिहान में, या शायद हमारी तरह रेडियो के इस पार और उस पार, बस जुड़े रहिए सांझ सरगम के साथ।

दोस्तों, संगीत की खासियत ही यही है कि इसमें कोई भाषा की दीवार नहीं होती। एक धुन सीधे दिल तक पहुंचती है। कभी शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन एक गीत वह सब कह देता है जो हम किसी से कह नहीं पाते। इसलिए तो कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ रिश्ते

रविवार की सुरली शाम में आपके साथ हूं मैं मनीष। कार्यक्रम है सांस सरगम। समय भले ही आगे बढ़ रहा हो लेकिन अच्छी धुनों के साथ बिताया हुआ वक्त कभी कम नहीं लगता। और अब जो गीत हम लेकर आ रहे हैं उसकी धुन शायद आपको अपने किसी पुराने दौर की याद दिला दे। तो यादों की उस खिड़की को खोलिए और सुनिए।

आज के साथ सरगम में गीतों का सफर यहीं तक था। उम्मीद है इस संगीत के सुरों ने आपके रविवार की शाम को थोड़ा और खुशनुमा बनाया होगा। याद रखिए, जिंदगी चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने लिए कुछ पल निकालिए और उन पलों में संगीत को जरूर जगह दीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी और सुरली शाम में, कुछ नए गीतों के साथ, कुछ पुरानी यादों के साथ और आपके अपने सांझ सरगम के साथ।

0: ये प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा जरूरी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि रांची में छात्रों का 26-27 दिनों से जारी आंदोलन सफल रहा है। पत्रकारों से बातचीत में आज उन्होंने कहा कि छात्रों के हित में आए निर्णय को लागू करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। श्री महतो ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य के सपने देखने वाले युवा व्यवस्था से परेशान होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। रांची जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आम सभा के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। आयोजकों को अनुमंडल पदाधिकारी की निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्यक्रम की तारीख, समय, मार्ग और संभावित प्रतिभागियों की संख्या की जानकारी देनी होगी। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के अंतिम चरण में अंतिम सोमवारी और मंगलवार को श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि पिछले 3 सप्ताह के सामूहिक प्रयास से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा, सुरक्षा और सुगम जल अर्पण कराया गया है। महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। पूल ई का यह मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवावाणी।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बना,
3: FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का 6 केंद्र है।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी शाम के

5:05 पर आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जय भारती। शाम 5:30 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। वो अखड़ा कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6:02 पर। शाम 6:30 पर विविधा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इसके तुरंत बाद जिले में आजकल का प्रसारण किया जाएगा। 7:15 पर श्रोताओं की पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। रात के 8:00 हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात के 9:00 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। रात के 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 10:00 गजलों का कार्यक्रम महफिल का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग श्रोता सुनेंगे रात के 10:30 पर। रात के 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और रात के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फौजी भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं फिल्म बॉर्डर से रूप कुमार राठौर के स्वर में।

जय भारती कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं चालबाज फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
4: जय भारती कार्यक्रम में श्रोता भाई, अब सुनते हैं दामिनी फिल्म का ये गीत कुमार शानू और साधना सरगम के युगल स्वर में।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं चलते चलते फिल्म का ये गीत अभिजीत और अलका याग्निक के स्वरों में।

इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों का विशेष कार्यक्रम जय भारती अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

सभी किसान भाई बहनों को कमलेंदु का सप्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कुशल मंगल होंगे। और वैसे भी आप सभी कृषि के साथ साथ अतिरिक्त आय हेतु कई प्रकार के पशुपालन भी करते हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए, कृषि कार्य के लिए व्यावसायिक तौर पर पालते हैं और इनसे हमें काफ़ी लाभ भी मिलता है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ भी होता है। और इसी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर कृषक भाई बहने बकरी पालन तो ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके लिए अनुकूल वातावरण या फिर सुविधाएं आदि मिल जाते हैं, जैसे चरागाह तथा पसंदीदा पत्तियों के जो पेड़ होते हैं उनका भी पर्याप्त मात्रा में होना, और बकरी से निर्माण हेतु सुविधाएं भी हैं, और आसपास में ही कविराज या फिर पशु चिकित्सकों की सुविधाएं भी हैं, ताकि बकरियां अगर अस्वस्थ बीमार पड़ जाए तो फिर सही समय पर इलाज भी हो सके। बकरियां अधिकतर शौकीन किस्म के पशु होते हैं, जो कि हमेशा सूखे और ऊंचे स्थान पर रहना पसंद करते हैं। बारिश और ठंड उन्हें पसंद नहीं है, इसी समय थोड़ा देखभाल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, अच्छे नस्लों में ब्लैक बंगाल तथा जमुनापारी हैं, जो ज़्यादा पूंजी बढ़ाते हैं और शारीरिक बनावट भी अच्छा होने के कारण व्यापारी भी इन्हें पसंद करते हैं और अन्य लोग भी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बकरी पालन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक और आय का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। पर्याप्त सुविधाएँ हो तो आप बकरी पालन ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, आप सभी अपने क्षेत्र में चाहे कम हो या फिर ज़्यादा हो, शौकीन तौर पर हो या फिर व्यावसायिक तौर पर बकरी पालन आप कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। और इस चर्चा के पश्चात हम थोड़ा मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा मुंडारी लोकगीत।

0: तो किसान भाई बहनों, अभी हम आनंद ले थे इस मुंडारी लोकगीत का। कलाकार थे मुंशी राय मुंडा एवं साथीगण। और इस लोकगीत के पश्चात हम कुछ जानकारी लेते हैं और कृषि एवं बागवानी में खरपतवार नियंत्रण क्यों जरूरी है, इससे क्या लाभ है। यदि हम जो भी फसल लगाते हैं, अनाज हो या फिर सब्जी फसल हो या फिर हम फलों की बागवानी किए हैं, इमारती पौधों को लगाए हैं, तो उनके आसपास अनावश्यक जो भी घास फूस या फिर पौधे निकल जाते हैं तो उनके बढ़वार को रोक देते हैं, सही रूप से विकास नहीं हो पाता है। तो इस पर हमें कुछ सफाई और कोड़ाई करनी चाहिए, खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। तो आइए हम इन विषय को लेकर के एक सफल कृषक से मिलते हैं। हमारे बीच में है आज प्रबुद्ध कृषक जो खरपतवार नियंत्रण के बारे में और इसके लाभ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार।
1: जोहार।
0: तो आज हम खेतीबाड़ी के बारे में कुछ ऐसी बातों को लेकर आए हैं, जैसे कि बहुत सारे आप पेड़ पौधे भी लगाए हैं, बागवानी भी किए हैं, इसके साथ साथ खेतीबाड़ी में बहुत प्रकार के सब्जी वगैरह भी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि मौसम के अनुसार उसके आसपास बहुत सारे अनावश्यक घास पत्ते वगैरह निकल जाते हैं, तो ये

0: सब अगर निकलते हैं तो पौधों के लिए या फिर कोई भी आप इमारती वृक्ष हो या फलदार पौधे लगाते हैं, तो इसके लिए तो विकास तो रुक जाता होगा।
1: जी, इसमें विकास रुक जाती है, काहे कि जो उसको पौष्टिक मिलना चाहिए,
0: मिलना चाहिए। हाँ
1: जो जो पौधा हम लोग लगाते हैं
0: हाँ
1: उसमें पूरा वो नहीं खींच पाता है, पूरा
0: हाँ मैंने घास घास पात वगैरह वही
1: जो
0: लोग
1: घास
0: अपने से
1: पात
0: खींच
1: जो
0: लेते
1: रहता
0: हैं।
1: है
0: हाँ
1: उससे
0: हाँ
1: वापस नहीं खींच लेता है,
0: अच्छा।
1: और
0: हाँ
1: इसको जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ सही नहीं हो पाता है,
0: हाँ सही बात
1: उसे
0: है।
1: रोकता है उसको ग्रोथ होने में। तो इसको सबसे बढ़िया तो पहले साफ सफाई वो जरूरी है इसके
0: जरूरी
1: लिए।
0: है। हाँ। अच्छा, मैंने आसपास में जितना भी जैसे पौधे लगाए हैं, कोई कलमी का पौधा है या फिर इमारती वृक्ष का पौधा है, तो उसके आसपास में कुछ दूरी तक है यार, कम से कम 2-2.5 फीट 3 फीट का जितना भी चौड़ाई में हम लोग गोलाकार आकृति में साफ सफाई करेंगे और मिट्टी को भी कुड़ाई कर देंगे ना।
1: जी, ऐसे अगर मिट्टी का कोड़ाई करते हैं तो उसमें कहा था कि मिट्टी तो थोड़ा हल्का हो जाता है, और
0: अच्छा
1: उसमें
0: अच्छा हाँ
1: जो जड़ फैलने में भी सुविधा होती है,
0: सुविधा
1: उसको
0: होता है।
1: जो नाइट्रोजन होता है ना, जो पेड़ को या पौधा जो भी रहता है उसमें,
0: हाँ।
1: जो भी हम लोग खाद पदार्थ डालते हैं
0: अच्छा।
1: तो उसमें सीधे वो जो हम लगाते हैं उसी पौधा या पेड़ को, उसमें जो हम लोग लगाते हैं उसी में सीधा अवशोषित कर लेता है, खुद
0: अच्छा अच्छा हाँ और बढ़ने में उसको
1: बढ़ने
0: सुविधा
1: में भी
0: मिलता
1: जी ग्रोथ में भी
0: है।
1: सुविधा होता है। जी
0: हाँ, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, नाइट्रोजन भी मिलना चाहिए पौधों को। तो
1: सूर्य प्रकाश
0: जिस
1: बहुत जरूरी है।
0: हाँ, तो इसे बागवानी हो चाहे कोई अनाज फसल या सब्जी फसल भी तो करते होंगे, जैसे कि हम कहीं गोभी लगा दिए या फिर कोई टमाटर बैंगन वगैरह लगा दिए, तो इसमें भी तो आसपास में निकलते ही होंगे नहीं।
1: जी सर, इसमें है कि हम लोग जब भी सब्जी लगाते हैं तो ऐसा होता है, हर एक बार जब भी लगाते हैं तो ऐसे खाद पदार्थ तो निकल ही जाता है,
0: निकलते हैं।
1: ये
0: हाँ
1: स्वाभाविक है। जी, इसमें इसका भी हम लोग निपटारा करने की कोशिश करते हैं।
0: हाँ हाँ
1: पहले हम लोग जब भी धूप का सीजन में होता है ना,
0: हाँ हाँ
1: गर्मी सीजन में, तो हम लोग
0: अच्छा
1: उसी समय पहले तो मिट्टी को तैयार करने टाइम पहले हम लोग हाल जोतते हैं,
0: हाँ
1: जब
0: हाँ
1: मिट्टी
0: हाँ
1: पलट के पहला तो कोशिश रहता है कि उसी समय हम लोग सब खाद पदार्थ को, पदार्थ या जितना भी रहता है
0: हाँ हाँ
1: सब उसी समय हम लोग समाप्त कर दें, ताकि
0: अच्छा अच्छा हाँ
1: उसमें रहता है जब भी जो बीज सब रहता है ना उसे भी थोड़ा थोड़ा करके उसमें मिट्टी में रहता ही है, तो
0: अच्छा अच्छा हाँ
1: निकलने का बहुत चांस रहता है। अगर उसी समय जोताई करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, तो जितना भी खाद जो खरपतवार रहता है ना
0: हाँ।
1: सब उसी में धीरे धीरे करके खत्म हो जाता
0: खत्म हो
1: है,
0: जाता है।
1: जो बचा खुचा जो रहता है बाद में लगाने के बाद उसको हम लोग थोड़ा सा करके खुदाई उदाई करके उसको थोड़ा
0: हटा
1: निकाई
0: लेते
1: करके
0: हैं।
1: हटा
0: हाँ,
1: देते
0: निराई गुड़ाई
1: हैं,
0: तो करना ही
1: निराई
0: होगा।
1: गुड़ाई करके हटाते हैं।
0: अच्छा, कभी कभार देखा जाता है गर्मी के सीजन में अगर कोई सूखा जमीन है तो फिर वहाँ डाल करके हर साल कुछ खरपतवार निकल रहा है बोल करके उसमें पुआल जला देते हैं, फिर उसे सूखा चीज जला देते हैं, तो जलाने से भी तो कुछ हद तक समाप्त होता होगा नहीं।
1: जी, जलाने से भी बहुत कुछ तो समाप्त हो ही जाता है। उसमें क्या होता है कि जलाने से बीज जो ऊपर में रह जाता है
0: हाँ।
1: हम लोग का, कोई खाद पदार्थ जितना भी निकलता है उसमें
0: हाँ।
1: जो बाद में सब बीज सब गिरा हुआ रहता है जमीन में, और ऐसा करने से वो सब जल जाता है, तो
0: हाँ।
1: उसमें और निकालने को चांस नहीं रहता है उसमें वो जगह में।
0: अच्छा। हाँ अच्छा, कुछ खेतों में ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ मैंने मिर्च जैसे पत्ती वाला जो पौधा होता है, वो अधिकतर बरसात आने का शुरुआत में ही बहुत घने मैंने जंगल जैसा फैल जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते फिर फूल लेगा, फूल होने के बाद फिर फलता भी है, अगर उसको फलने के पहले ही अगर हम उखाड़ के फेंक देते हैं तो ऐसे में भी तो साफ हो सकता है आराम से।
1: जी हाँ, इसमें भी साफ हो सकता है, इसमें पूरा पूरी सफाई हो जाएगा, उसमें कोई हानि
0: अच्छा
1: है
0: अच्छा
1: अगर
0: हाँ मैंने बीज वो होने के नहीं देना चाहिए उस समय।
1: जी बीज नहीं होना चाहिए, बीज से
0: अच्छा
1: पहले अगर हटा देते हैं
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: इसमें और खाद पदार्थ वहां नहीं निकलेगा।
0: अच्छा अच्छा हाँ, इस तरह से भी इसका निपटारा कर सकते हैं।
1: जी, और उसको आप जब निपटारा कर रहे हैं तो कहीं पे आप थोड़ा सा गड्ढा और बना लेते हैं,
0: हाँ।
1: तो उसके पर फिर हम लोग एक जगह रख के उसका सड़ा लेते हैं सड़न सुविधा से, तो
0: हाँ।
1: उसका फिर हम लोग खाद भी बना सकते हैं उसी को, और
0: हाँ
1: उसी के
0: हाँ
1: माध्यम से हम लोग कुछ
0: अच्छा, कंपोस्ट
1: कंपोस्ट
0: खाद भी बन जाता है।
1: खाद बना के उसी को हम लोग यूज भी कर सकते
0: यूज
1: हैं।
0: भी कर सकते
1: जी,
0: हैं।
1: इसमें कुछ
0: हाँ
1: बचत होती है, खाद
0: हाँ सही बात है, अच्छी बात है, इसमें कोई खर्च भी नहीं और उसका
1: जी
0: फिर से पुनर्चक्र हो जाता है। अच्छा, अक्सर ऐसा भी कहीं कहीं खेतों में देखा जाता है कि आपके खेत में तो सफाई था, पूरी तरह से साफ कर चुके थे, लेकिन जैसे ही नमी होता है और आप लगाने की तैयारी करते हैं तो दूसरे खेत से जो

0: पानी बह के आता है तो उसमें कुछ झड़ा हुआ बीज भी आ जाता है और आपके खेत में फिर उगना शुरू हो जाता है, तभी होता है क्या?
1: जी सर, इसमें तो बहुत ज्यादा चांस रहता है, इसमें हमेशा
0: अच्छा
1: उस
0: अच्छा
1: होते रहता है। हर एक साल हम
0: अच्छा
1: लोग हर एक
0: अच्छा
1: साल निराई गुड़ाई करते हैं, लेकिन हर एक साल दूसरे जो तो
0: हाँ।
1: है ना, अगल बगल में घोड़ा सब में
0: अच्छा,
1: है या
0: दूसरे
1: खेत
0: खेत
1: में
0: का
1: है,
0: बीज इधर आ
1: उनका
0: जाता है।
1: बीज जब सब होता है कि
0: हाँ,
1: जी, ये तो
0: पानी
1: हवा
0: का।
1: से भी कभी कभार आ जाता है,
0: अच्छा
1: पानी
0: हाँ,
1: के माध्यम से भी आ जाता है उड़
0: अच्छा,
1: के। जी
0: हाँ, कभी आंधी तूफान होने से भी, जब सूखा बीज
1: जी
0: रहता है तो झड़ के पार हो जाता है। हाँ, या फिर पानी के माध्यम से भी आ जाता है।
1: पानी के माध्यम से भी आ जाता है।
0: तो ऐसे कुछ आधुनिक तरीका भी है क्या, जिसमें कोई छिड़काव करते होंगे या फिर कोई पाउडर वगैरह छिड़काव करते हैं जिससे कि घास वगैरह मर जाए, इस तरह का भी होता है क्या?
1: जी सर, इसमें भी है, हम लोग यूज करते हैं, तो जैसे अभी हम लोग का छिड़काव के लिए भी आया हुआ है,
0: हाँ,
1: और भी पाउडर भी मिलता है, और छिड़काव के लिए हम लोग स्प्रे करने के लिए दवा भी मिलता है। तो
0: अच्छा,
1: इससे होता है कि हम लोग कुछ हद तक तो मर जाता है, लेकिन पूरा
0: हाँ
1: हम लोग का जो जड़ सहित समाप्त नहीं हो पाता है, उसमें
0: हाँ
1: भी
0: हाँ अच्छा,
1: कुछ हद तक राहत मिलता है उसमें।
0: मतलब ऊपरी भाग मर जाता है और उसका नीचे जड़ कहीं ना कहीं रहता ही है, और नमी होने से फिर से निकलना भी शुरू हो
1: जी
0: जाता है।
1: सर, एकदम जी।
0: अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, ऐसा भी है। तो इसको सही रूप से मैंने रोकथाम करने के लिए क्या जोताई के समय भी हम लोग कुछ चूने का व्यवहार या फिर और कुछ कर सकते हैं जिससे भी थोड़ा सा रोकथाम हो सके?
1: जी, अगर इसमें रहता कि कोई अगर ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें नीचे में जड़ हो, तो इसमें कंद भी रहता है, किसी किसी में
0: हाँ, कंद भी रहता है छोटा छोटा।
1: कंद,
0: हाँ
1: जी छोटा छोटा कंद रहता है, और ऐसे अगर कंद है तो फिर वो तो समाप्त नहीं हो पाता है, तो उसमें तो हम लोग को चुनाई करना ही चाहिए।
0: हाँ।
1: चुनाई करने से उसमें रहता है कि और यह नहीं होता, नहीं तो ऐसा होता है कि कंद ऐसा चीज है कि सूखने के बाद भी अगर नमी मिलता है तो पुनः वो वापस फूल जाता है, वो
0: अच्छा, हाँ,
1: जीवित होने का ज्यादा चांस रहता है उसमें।
0: चांस रहता है।
1: तो
0: हाँ,
1: इसे चीज में हम लोग जैसे हो गया मोथा घास, ये सब बहुत ये सब चीज है जो
0: हाँ, अलग अलग प्रकार के
1: इसमें
0: घास
1: अलग
0: होते
1: अलग
0: हैं।
1: प्रकार के घास है, कि वो रिटेन उस अगर सूखने के बाद भी वो पानी लगने से नमी हो जाता है तो फिर निकल जाता है। तो इस
0: अच्छा
1: समय
0: अच्छा
1: हम लोग अधिकतर कोशिश करते हैं कि चुनाई करके उसको हटाते हैं, और जो अन्य जो घास है या जो भी निकलती है उसको हम लोग अधिकतर धूप का सीजन में ही उसको निराई गुड़ाई करके या हल जुताई करके उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि सारा जितना भी निकलता है वो समाप्त हो
0: अच्छा,
1: जाए उसी टाइम में।
0: हाँ, फिर भी बच्चे कुछ अगर रहते हैं जैसे धान फसल हुआ, चाहे भी जो भी अगर अनाज फसल है, तो उसमें अगर निकल जाए तो फिर शुरुआत में ही उनको खरपतवार निकाई गुड़ाई करके निकाल देना चाहिए ना,
1: जी सर,
0: नहीं तो
1: इसमें तो हम
0: बड़े होने के
1: लोग
0: हाँ बाद बड़े होने के बाद तो फिर उसका जड़ मजबूत हो जाता है, फिर उखाड़ने में भी असुविधा होता है।
1: जी बड़े होने के बाद उखाड़ने में असुविधा होता है, और इसमें रहता है कि पहले अगर उसमें अगर पहले अगर नहीं उखाड़ते हैं तो फिर जो हम लोग लगाते हैं तो पौधा को बहुत ज्यादा नुकसान होता है,
0: अच्छा, हाँ,
1: और जो घास पर जो रहता है खाद पदार्थ रहता है उसमें अन्य भी और अधिक जो है कीड़ा सब आ जाता है
0: हाँ,
1: उसमें
0: कीड़ा
1: छुपने
0: भी
1: का,
0: आता है,
1: कीड़ा
0: सही बात है, ये तो सही बात है। हाँ
1: और उसमें छिपने का बहुत ज्यादा, उसी में लोग अधिकतर चांस करते हैं कि
0: हाँ फसल
1: लोग
0: भी बर्बाद हो जाता है,
1: फसल भी
0: ऐसा
1: बर्बाद होता है और उसी में लोग छुप जाता है
0: छिप जाता है। हाँ,
1: बहुत। जी
0: सही बात है। तो इससे में तो पौधों को भी एक निश्चित दूरी में लगाना चाहिए ताकि वो ज्यादा घना भी ना हो ना।
1: जी इसमें एक रहता है कि ऐसा है ना सर जी, कि हम लोग कम से कम 1 फुट 1.5 फुट ऐसा
0: हाँ,
1: दूरी रहता है, जैसे पौधा के हिसाब से
0: अच्छा,
1: कौन सा पौधा कितना बड़ा ही होता है, बड़ा
0: हाँ
1: होता
0: हाँ
1: है चौड़ा, जो
0: उसके
1: उसमें
0: हाँ उसको
1: फलाव
0: ध्यान में
1: रहता
0: रखते
1: है
0: हुए।
1: ध्यान में रखते हुए कि कौन सा चीज लगा रहे हैं, इस
0: हाँ
1: हिसाब से
0: हाँ
1: हम लोग उसका दूरी तय करते हैं,
0: अच्छा, हाँ,
1: उसी के
0: अब
1: अनुसार हम लोग लाइन बाई लाइन करके लगाते
0: हाँ,
1: हैं क्यारी करके, फिर क्यारी बनाने
0: हाँ
1: के
0: जैसे
1: बाद हम
0: बंधा
1: लोग
0: गोभी हुआ या फूल गोभी, उसका आकार लगभग कितना होगा उसके हिसाब से तय करते हैं, या फिर
1: जी
0: बैगन लगाते होंगे तो उसका पौधा भी कितना दूरी तक उसका जगह लेगा उसके हिसाब से मैंने दूरी बनाते हैं।
1: जी सर,
0: अच्छा, हाँ, अच्छा, और आगे ये बताएं कि जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई लगा तो दिया जल्दीबाजी में, चाहे धान का ही अनाज का फसल हो या फिर और भी, लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे ही पौधे बढ़ना शुरू होते हैं उसके साथ साथ खरपतवार इतना निकल जाते हैं कि उस पौधे को ढक देते हैं, दिखता भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो फसल सही तरीके से होगा भी नहीं। तो
1: नहीं इसमें तो नहीं होगा, तो
0: जितना उपज
1: उसमें
0: मिलना चाहिए उतना उपज मिलेगा भी नहीं।
1: नहीं उसमें उतना उपज नहीं मिल पाएगा, कहे कि हम लोग जितना भी खाद्य पदार्थ जो रहता है
0: हाँ
1: हम
0: हाँ
1: लोग जो लगाते हैं पौधा जो भी धान उन जो भी लगाते हैं
0: हाँ हाँ

0: तो उसमें जो हम लोग जो खाद पदार्थ जो डालते हैं वो
1: हाँ
0: सारा जो रहता है वो जो खाद पदार्थ जो खाद पदार्थ सब जितना भी है सब सोच ले सींच लेता है उसको। और हम लोग जो धान जो या जो ही कुछ भी सब्जी लगाते हैं
1: हाँ
0: या कोई भी पदार्थ या पौधा लगाते हैं तो उसमें वो जो अपना उसको पूरा शोषित नहीं कर पाता है, पोषण उसको सही नहीं मिल पाता है। तो
1: हाँ
0: इस हिसाब से हम लोग को तो उसको पहले निकाल देना चाहिए उस सबको।
1: निकल देना चाहिए। हाँ
0: जी
1: तो आपके अनुसार किस तरह का अगर लगाया जाए तो सुविधा हो, जैसे कि अगर हम जहाँ तहाँ ऐसे ही लगाते हैं या फिर छिड़क देते हैं तो उसमें तो निकौनी करने में भी असुविधा होता है या फिर चुनना पड़ता है, थोड़ा समय लग जाता है। तो इसके अलावा अगर हम कतारों में लगाएं, लाइन के सिस्टम से लगाएं, तो फिर उसको निगरानी करने में निकौनी या फिर चुनने में सुविधा होता है, या फिर बीच में हम लोग कुछ कोनोवीडर या छोटी ऐसे हल वगैरह भी चला सकते हैं। नहीं
0: जी इसमें आजकल तो सर इसे ना आधुनिक हो गया तो फिर इसमें अभी तो मशीन भी आती है। अगर
1: हाँ, छोटी
0: हम लोग कतार
1: साइज
0: में
1: का।
0: जी जी अभी अगर कतार में हम लोग लगाते हैं तो मशीन से भी कर सकते हैं
1: अच्छा।
0: इतना भी जी। और अगर दो इसमें और फायदा है कि आप कतार में लगाते हैं हम लोग
1: हाँ
0: तो आदमी जो हम लोग खुद भी यह चुनने करते हैं
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उसमें कतार में लगाने से
1: हाँ
0: घुसने
1: हाँ
0: घुस के जो
1: हाँ
0: पाए हम लोग
1: हाँ चलने
0: उसको
1: फिरने
0: ये
1: का भी अच्छा
0: निकलने में
1: जगह हो
0: सुविधा
1: जाता है।
0: होता है, चलने फिरने में सुविधा होता है। जी अगर
1: अच्छा, धान भी।
0: यहाँ पर अगर छिड़काव करने से तो
1: हाँ
0: उसमें नुकसान होता है हम लोग का, पैर में लग जाता है
1: हाँ
0: अपना
1: इधर
0: ही, उसमें
1: उधर फिर
0: नुकसान होता है।
1: दब
0: तो
1: जाता है,
0: अधिकतर
1: कुछ
0: करते
1: बर्बाद हो
0: हैं कि
1: जाता है।
0: कतार में लगाने का कोशिश करना चाहिए। जी
1: अच्छा। हाँ, तो अंततः हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहें कि अगर स्वच्छ कृषि करना है और स्वस्थ कृषि करना है तो फिर जो रोग रोधी किस्म का होना चाहिए और अच्छे बीजों का भी इस्तेमाल करें, ताकि उसमें अतिरिक्त खरपतवार भी ना निकले ना।
0: जी पहला तो बीज का तो सही चुनाव करना चाहिए
1: और मिट्टी को भी पहले तो अच्छी तरह से बनाना चाहिए।
0: और मिट्टी को तैयार कीजिए करना चाहिए, और साथ साथ में खरपतवार को भी पहले जुताई करके खत्म करना चाहिए।
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: उसको करने के बाद सही दूरी तय करके लगाइए लगाना चाहिए ताकि उसका पौधा सही सही बढ़ पाए और
1: हाँ।
0: सही उसका अनाज या कोई उपज दे पाए।
1: हाँ
0: सही
1: हाँ
0: दूरी में लगाते हैं तो उपज भी मिलेगा।
1: सही बात है। हाँ,
0: जी
1: देसी दोनों आपस में अगर सटे रहेंगे, ज्यादा घना हो जाएगा तो सही उपज मिलता भी नहीं है और सही फलेगा भी नहीं। इसलिए
0: जी
1: दोनों के बीच में मैंने सूर्य का रोशनी भी मिलना चाहिए, हवा भी मिलना चाहिए ना।
0: जी
1: अच्छा।
0: इसमें रहता है कि सूरज की रोशनी सही मिलने से बढ़ता भी है
1: हाँ
0: पौधा।
1: हाँ
0: अगर
1: हाँ
0: जहाँ
1: हाँ
0: का छायादार अगर हो जाता है अपने ये करते हैं तो वाला पौधा सही नहीं बढ़ पाता है,
1: अच्छा। हाँ
0: उसमें उपज भी कम होता है।
1: हाँ हाँ तो उम्मीद है हमारे किसान भाई इन बातों को ध्यान देंगे और अपने जो खेती बाड़ी को अच्छी तरह से करने के लिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना खेती बाड़ी को अंजाम देंगे। तो आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
2: इस मुलाकात के पश्चात किसान भाई बहनों, आप पुनः मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक उड़िया लोकगीत नीले कुमार साहू एवं साथियों के स्वर में।

किसान भाई बहनों, अभी हम आनंद ले रहे थे उड़िया लोकगीत का और कलाकार थे निलय कुमार साहू एवं साथीगण। किसान भाई बहनों, अभी बरसात का समय है और नमी होने के कारण बहुत सारे ऐसे खरपतवार निकल जाते हैं, अनावश्यक घास फूस और अन्य पौधे भी निकल जाते हैं जो कि हमारे अनाज फसलों को बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं, विकसित नहीं हो पाता और सही पैदावार नहीं मिल पाता है। इसीलिए साफ सफाई, स्वच्छ कृषि और खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके लिए आप पूर्व से ही मिट्टी की तैयारी अच्छी तरह से करें ताकि खरपतवार निकले ही नहीं। और कुछ ऐसे भी उपाय हैं जैसे निकोनी करके और कुछ घास मारने वाले ऐसे भी उपाय हैं, इनका भी आप कर सकते हैं ताकि साफ और स्वच्छ कृषि हो सके। तो किसान भाई बहनों, इसी बातचीत और लोकगीत के साथ ही आज का खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को पुनः एक बार जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। राज्य में जेपीएससी जेएसएससी विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। भाजपा ने राज्य सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी और सरकार से जुड़े लोगों की कथित संलिप्तता के बावजूद छात्रों को न्याय नहीं मिला। हजारीबाग के बरही में आज पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बाइक रैली निकालकर लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर पुलिस ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की और नशीले पदार्थों की बिक्री तथा सेवन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। पलामू जिले के पांकी थाना पुलिस ने ऑपरेशन सफाया के तहत व्यापारी से हथियार के बल पर लूट की तैयारी कर रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक अवैध देशी कार्बाइन, मैगजीन, 7 जिंदा गोलियां, 1 खोखा, 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के अंतिम चरण में अंतिम सोमवारी और मंगलवार को श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 25 अगस्त को गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा मध्यवर्ती जिले खूंटी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ओ अखड़ा।

नया आकाशवाणी रिया चाहे भाषा केंद्र तना एफ एम रिया 101.7 मेगा हर्ष रगन आई मतना ना अयुब पिंग छः बजाय न ते 2 मिनट होगा सिखाया ना कार्यक्रम हो आकड़ा अयुम इचपिन लगी लिंग बिटाओ जीव के महेंद्र गुई सबिन को अलिंग पे ते जोहार जाओ दिन लिखा गे एस पुरे लिंग सगमागु तड एना को मियन मियत लिंग अयुम इचपिन आयुम लगिन एफ एम रेडियो जपारे तैन एला अंडद सभी को एते अयर जानकारी रिया जगर बिंदी दारू को रोवा के ते लपा इडी दिया बिंदी

0: ranie leje do mit sara rakap kita baru citante. Ente na do marang ni na do asih tene dere Hanuman morbonitar loga anti. Nai ko didi morbonitar loga menureya. Ente ondo mendo entalai asih tene dere Hanuman morbonitar loga anti. Nai ko didi morbonitar loga menya. Inka inka tena do turui ho soben ko asih tene jaiyo ka amat ko leje. Ente chanam to marang ni saben tukum teitene marna rani am dam tege ase jomi kum teitene
1: acha
0: entena do menatna chi dere Hanuman mor loga am teitene teni kate chakak chakadi itene ente chakak chakadi te chilke na to lijere sap kida sap ke jake na do edo mat kirki ay tal buru cham tat kir param ki entena turu ho jo ko sare jene inko na do wa karuwe huru jene wa karuwe huru jene entena do inga pukin ko ka jeing itene ka ka manika nika en sara do ये अबु रानी में ये अटकर की है इनको मन था इतना दाचा ना तो ठीक मिला पंजे नाम तो सुनो को मन था इतना तो पंजे नाम तक सुनो तन समय रे पूरे बाजा गजा के साथ को सुनो था ना इनते बाजार ये सब तो निकल सड़ी थी ना बारी ये का करो बाजाना बाजे गो बाजाना मैं लिखा ही मौत ना इनते इतकु तो ना रानी अम पीछे कुछ इमती कागे गंगोनी उनको आ दी इतना मिले इनका ओडो ओडो मीर बुरुक परम के डना तो ओडो इनका के शब्द धाड़ी इतने इतकु बारी एका कारो बाजाना बाजे गो बाजाना मेल कईमो इतकु दनाई रानी अम पीछे कुछ इमते कागे गुंगुनी उनको आंधी इतने मिले ते इनका ते ओडो मीर बुरुक परम के डा ते इनका के दो शब्द तो साड़ी इतने शब्द तो इनका के साड़ी इतने मैंने अच्छी बारी एका करो बाजाना बाजे गो बाजाना मैं लिखा ही हूँ इतने कुछ ना ही रानी हम पीछे कुछ इम्ती कागे गुंजे उन कहाँ दी इतना मनी है इतने चाहे तो इनके इनका ते ना तो आईये बोलो सोबन को परम चबा के डा इतने को परम चबा के ते ना तो वाता को बिटा के डा इतने ना तो रानी के बुगल का दुप्तिया कम तो बिलेट कुआ इतने चाहे तो रानी ना सारा के इम्ते इतने मरा हो यार में ते को हो जू के ने सिंगल सुकुल को माको में इम्ते इतने इतने ना तो सारा तो बांडुलो के ओंडोल जना इतने ना तो सिंगल सुकुल को मट कुआ डीएन को कुनो किडा चना में इनका तायुब जने इतने गापतर सीता अपांग ना तो बाहर पाते किया किट कुआ या दा पाते गड़पा इतने ना तो सलपा कुसिनो गड़पा कुसिनो तन सुमाय रे गुटमली आयरिक को तना तेम तको निना को गालिया गोड़ा को गे निना को गालिया साल को गे निना को गालिया ओते को गे मितको इतने ना तो निको तो जीवन भीतर तो कुकुर कुरु किने इतने ना तो बुगल का उड़ाओ कि ना एन तो उड़ाओ कि ना इतना तो वह पाक हो जाए तन समय तो ना तो एन सारा तो को तैर गोए की एन तो को तैर गोए की इतना तो मात चुगर को रेस के इताई मात चुगर को रेस के इताई है एन ताको तो को हो जाए उल्ना एन तना तो दुलाबु रानी बुई डूरे ये को मिलते हैं ना एन तना तो रानी को इडूरे इतने एन तो को इडूरे इतने तो ना तो ओकोनोरा को सेनु एनोरा के सारा तो को रेस के इताई तो को चुगा ताई एन तना तो को सेनो सोबेन को सेनो चबा जाना इनते रानी तो चनाब ते सेनो तन समय रे मिथकतन चे आउरी ने बाना किन रिंग की डा बाना किन आउलिया मिथकतन तलबो सेनो तापे हुरा रिंग बिटापी अम तकतन इनते ना तो कुछ दूर सेन ले डाय ते आया कुआ उड़ उरे की इनते ओकों ता रसरा को या कना इनता है बिटा हुरे लड़ा इनते कुली इतने चीम लाना तरम इतने इनते इतने तोड़ो को या कना तो चिकते लाना तरम ही चनाब तो इनता चम तो दुबके इतना इनता ना तो राहनोरिया मिनिया ची काटा ते माँ धुलपुंग चलम ते माँ बंड चले बंड चल नोते कोते हो राजा सिर में भी उरेतान ते सिर मेरे सिमुंगा दायुमी ओको लेखन मनोहन निकरातना निदिने सिंह कहीं धूम हुए मने ओड़ो गिन के गराया काटा ते माँ धुलपुंग चलम ते माँ बंड चल नोते कोते हो राजा सिर में भी उरेतान ते इनका इनका तो सिमुंग आयु मयूम ते कौन गे अटकरिया ते बनिया चितना ते कबो इतना कुल कन मनोन कराया मने तोड़ो इनका गे राया काटा ते मा धुलपुंग चलम ते मा बंडो चले नोते कोते हो राजा सिर में भी उरतान मने ते ले ली इतने रानी में रात ना इनते इनते इतन मार्ची रानी जो का इन पाहिता में इनते कन्या की दान्या कुआं जो मी ये मनिया का कज के तोड़ो गे राया काटा ते मा दुलपुंग चलम।

0: ਤੇ ਮਾਂ ਬੰਡ ਚਲੇ ਬੰਡ ਚਲੇ ਨੋਤੇ ਕੋਤੇ ਹੋ ਰਾਜਾ ਸਿਰ ਮੇ ਵੀ ਉਰਤਾਨ ਮੇ ਤੇ ਸਿੰਮੂ ਗਾ ਜਕੇ ਇਸੂ ਬਿਕੋੜੋ ਗਾ ਅਟਕਾਰ ਕਿਡਾ ਤੇ ਮੇ ਮਾਰਚੀ ਰਾਨੀ ਇਨਪਾ ਹਿਤਾ ਵੇ ਮਤੀ ਕਾਣਿਆ ਗਿਦਾ ਆਣਿਆ ਕੋਮ ਜੋਮੀ ਮੇ ਇੰਤ ਚਾਮ ਚਿਲਕੇ ਚਿਲਕੇ ਰਾਨੀ ਜੁਕਾ ਲੇਕਾ ਇਟਾ ਪਾ ਹਿਤਾ ਨੋ ਕਰੇ ਨਿਕਾਤੇ ਇਮਤੇਨ ਚਨਪ ਸਿੰਮੂ ਗਾ ਇਨ ਗੋ ਯਕਨ ਸਾਰਾ ਕੇ ਜੀਵੋ ਦਾ ਆਨੇ ਉਮਈ ਚਮੈ ਨਿਰੂਟੇ ਤੇ ਜਿਨੇ ਤੇ ਨਿਰੂਟੇ ਜਿੰਦ ਸਿੰਮੂ ਗਾ ਦਾ ਅਜਨਾ ਇਮਤੇ ਸਮੈ ਚਨਪ ਦੋ ਰਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇਮਤੇ ਅਤਿਆ ये होला दो ये इंगाया पुंत को जो लेनते को थेर को लेन मिया इन त मा चुगार को रेस्के लेन मिया आकर को चिदु लेन मिया ते का गिया रानी उड़ा किना इन त जुकन गीती नो ले नो मेन चनम लांदा लांदा तेन दूम जिने इन ते इतने इन त चनम तो ए टीएम चकटा इन ते इतने इन ते चनम मिनाते बुगली का चनम तो किंग तैने इंगा पुगु को सेनो जना रानी लो चनम ओडो सरा लो किंग तैने इन इन का सीधे समय दो आको কুইন কুইমিন সাথী কো তৈ কিনা যে আকো আকো আকো গোয় একান কো জকেট কো জির উরে কো তৈ কিনা এন্ত না সময় দো ইন কর দো বানো জন ওয়াসনি বিঙ্গলিং কানি কি তিলিং চাওয়া হেতন
1: না দেন আয়ুমতন তৈ কিনা নাটক চে পিরকেল মেন্তয়া দোসি ওকোয়ে মরনন নাটক চনম এলা সাড়ে ইংগল বয়ম লিয়া নিয়া আবুয়ে লাগিন ইসু গরজমনা
2: उदासी मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं याद रखिए आप अकेले नहीं हैं मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है मदद के लिए संपर्क करें रिम पास कांके रांची
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697 टोल फ्री नंबर 1449 या 1-800-345-4060 पर
2: समय पर मदद लें स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
1: कार्यक्रम रेया तुनुरे मियन आंधी दुरेंडिंग आयोजित बना

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो अखड़ा। हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में हम हर दिन कुछ नई नई जानकारियाँ आपके साथ साझा करते हैं। इसी क्रम में आज हम जानेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, भारत में प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि और वैज्ञानिक प्रगति को याद करने का अवसर है। 23 अगस्त सन 2023 को भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। श्रोताओं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं में विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति रुचि पैदा करना है। यह दिवस हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत, प्रतिभा और समर्पण को सम्मान देने का अवसर भी प्रदान करता है। श्रोताओं, भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण, मौसम पूर्वानुमान, संचार, दूरसंचार, पृथ्वी अवलोकन और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान और मंगलयान तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। श्रोताओं, चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए एक बेहद गौरव का क्षण था। इसके लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा के सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में योगदान दिया था। इस सफलता ने पूरी दुनिया में भारत की वैज्ञानिक क्षमता को प्रदर्शित किया। श्रोताओं, राष्ट्रीय

देश भारत भी अन्य देशों की तुलना में कम नहीं है। हमारा देश तकनीकी क्षेत्र में हर दिन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और कई नए नए आविष्कार अन्वेषण किए जा रहे हैं। इसमें हमारे देश के वैज्ञानिक पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, साथ ही साथ नई नई अनुसंधान के क्रम में उन्हें बहुत सारी विश्व के बारे में जानकारी हासिल हो रही है। साथ ही साथ चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक का सफ़र हमारा देश भी तय कर चुका है और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। श्रोताओं, अभी हम चर्चा के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे थे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
3: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में आइए अब जानकारी लेते हैं। दूर संचार के दिशा में इंटरनेट की भूमिका विषय पर
6: जरिए उपग्रह में भेजा जाता है। ये उपग्रह इन्हें परावर्तित करके इच्छा अनुरूप स्थानों में भेज देते हैं। इस माध्यम से भेजने पर हमारे संवाद आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। इस उपकरण के जरिए हम विश्व के किसी भी कोने को दूसरे कोने के साथ जोड़ सकते हैं और हमें जो भी सूचनाएं प्राप्त करनी हो आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है। कंप्यूटर को माध्यम बनाकर जब हम कोई भी विषय का संचार एक जगह से दूसरी जगह तक करते हैं, तब इसे ये जो नेटवर्क होता है और उनको दूसरे नेटवर्क को जोड़ देते हैं, तब हम इसे इंटरनेट कहते हैं। इस प्रकार इंटरनेट जो है कुछ कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। हर प्रकार के समाचार को प्राप्त कर सकते हैं और इसके जरिए हम कोई भी चीज़ को आसानी से दूसरी जगह तक भी भेज सकते हैं। तो इंटरनेट के जरिए हम इन कार्यक्रमों को एक जगह से दूसरी जगह तक संचार कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए हम ये चीज़ें प्राप्त कर भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। जैसे पहला हुआ इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसे ईमेल भी कहा जाता है। इसमें कोई भी खबर उसी रूप में एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जा सकता है। दूसरा हुआ इन्फॉर्मेशन, सूचना, किसी भी प्रकार की सूचना कुछ ही समय में संग्रह किया जा सकता है। तीसरा जैसे हुआ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम प्लानिंग को सॉफ्टवेयर के माध्यम से पाया जा सकता है जब किसी को इसकी आवश्यकता होगी। इंटरटेनमेंट।

0: इंटरनेट एक अच्छा साधन है। किसी भी प्रकार का मनोरंजन कार्यक्रम इसके द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। ग्रुप डिस्कशन, किसी भी प्रकार का ग्रुप डिस्कशन में कोई भी अगर भाग लेना चाहे तो इसके माध्यम से वो भाग ले सकता है। चौथा एक विशेष और क्या है ना, ई कॉमर्स मतलब है ऑनलाइन शॉपिंग, इसको जैसे हम कह सकते हैं। इसके इंटरनेट के माध्यम से विश्व के किसी भी हिस्से से किसी भी वस्तु की खरीदारी की जा सकती है। तो ये हुए कि इंटरनेट के जरिए हम क्या लाभ पाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे अपने आप को इंटरनेट के साथ जुड़ सकते हैं और इस तरह से उसके जुड़ने के लिए क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो पहले एक हुआ कंप्यूटर, दूसरा हुआ मॉडेम। मॉडेम का अर्थ है मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन। इसकी आवश्यकता विभिन्न स्टेज में होती है, जैसे इंटरनल मॉडेम है, एक्सटर्नल मॉडेम है, फैक्स मॉडेम है। तीसरी जो आवश्यकता है हमको प्रोग्राम की, ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से है। चौथी जो आवश्यकता होती है टेलीफोन लाइन, हमका है संवाद को भेजने के लिए। उस टेलीफोन लाइन के अंतर्गत एक मॉडर्न सिस्टम और भी आता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये फास्ट लाइन है जिससे हम सूचनाएं आसानी से भेज सकते हैं। उसके बाद आता है सर्विस प्रोवाइडर, इससे हम जो भी चीज़ चाहें अपना पा सकते हैं। अब रहा इंटरनेट सिस्टम, कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है जो बहुत से इस प्रकार के नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जमशेदपुर में सत्यम कंप्यूटर का अपना नेटवर्क है जो सारे दुनिया के तमाम नेटवर्क सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ। हमें अगर मान लीजिए चायवासा में बैठकर विश्व के किसी भी जगह से कोई जानकारी लेनी हो तो हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से उसके साथ संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए हम कंप्यूटर में अपनी जिज्ञासा को फीडबैक कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। तो ये जो होगा कंप्यूटर डिजिटल के माध्यम से उसे दूसरी जगह पर भेज देगा। ये भेजने का जो सिस्टम है ये माइक्रोवेव या केबल के माध्यम से भी हम उसको जमशेदपुर के नेटवर्क में भेज सकते हैं। वहाँ मॉडेम क्या करेगा, उस नेटवर्क को परिवर्तित करेगा, करके जो चीज़ हमको जानना है उसी हिसाब से वह ISD लाइन के माध्यम से उस आवश्यकता को दूसरे इंटरनेट से प्राप्त करेगा और फिर हमें अपने कंप्यूटर में भेज देगा, जहाँ हम मॉडेम के द्वारा डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तन करके हम प्राप्त कर सकते हैं। जमशेदपुर स्थित यह नेटवर्क हमसे इस कार्य के फलस्वरूप कुछ रकम चार्ज कर सकता है। रकम की दर यह निर्भर करती है कि वह किस माध्यम से हमारे पास भेज रहा है। अगर केबल के जरिए हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं तो रकम की परिमाण कम होगी, और अगर माइक्रोवेव का साधन हो तो रकम की परिमाण ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस प्रकार यह नेटवर्क हमारे सर्वर का काम करेगा। किसी प्राइवेट संस्था से अगर हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके लिए न केवल इंटरनेट नेटवर्क को रकम अदा करनी होगी बल्कि उस सूचना के लिए उस संस्था को भी रकम देने पड़ेंगे। लेकिन सरकार से या फिर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या और कोई ऐसी सामाजिक संस्था से कोई भी सूचना अगर हमें प्राप्त करनी हो तो उन्हें कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ती है, केवल हमको इंटरनेट के लिए सर्विस चार्ज ही देने पड़ते हैं। इंटरनेट से सूचनाएं संग्रह करती हैं उनमें मुख्यतः आपके जिसे हम लोग सर्च इंजन कहते हैं, मोजाइक, याहो, लाइकॉस इत्यादि सब आते हैं। तो अब हम यही देख रहे हैं कि इंटरनेट दूरसंचार माध्यम का एक ऐसा प्रतिनिधित्व प्रतीत करता है जिससे हम घर बैठे समूचे विश्व का हर चीज़ को संग्रह कर सकते हैं।
1: दूर संचार की दिशा में इंटरनेट की भूमिका, इस विषय पर अभी आप वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे आदित्य कुमार मिश्रा। श्रोताओं कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं यह प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है कोई मिल गया। आवाजें हैं शान और कविता किशनमूर्ति की।

अभी आपने सुना कोई मिल गया फिल्म का ये गीत शान और कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में। श्रोताओं विविधा कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या फिर जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। श्रोताओं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना या पोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकतानुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। श्रोताओं, पोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है इसके बारे में जानते हैं। श्रोताओं, यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती है। श्रोताओं, अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो तो आप मिशन वात्सल्य योजना का लाभ ले सकते हैं। श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ आज का हमारा

विदा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम से हमें विदा दें, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चयपासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55 हो रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम बनाने की अपील। कहा, वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करना जरूरी। जेपीएससी जेएसएससी के छात्र आंदोलन पर सियासत तेज। लाठीचार्ज को लेकर भाजपा और झामुमो ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। बासुकीनाथ में अंतिम सोमवारी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। भीड़ नियंत्रण और सुगम जलार्पण के लिए व्यापक इंतजाम। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का जताया अनुमान। रांची, गुमला, सिमडेगा समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। इस मौके पर स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राज्य में जेपीएससी जेएसएससी विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। भाजपा ने राज्य सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी और सरकार से जुड़े लोगों की कथित संलिप्तता के बावजूद छात्रों को न्याय नहीं मिला। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज आरोप लगाया कि पुतला दहन के लिए पहुंचे छात्रों पर कथित रूप से झामुमो कार्यकर्ताओं ने हमला किया।
1: कि राहुल गांधी जी के मुख्यमंत्री को यह कहने के बाद कि छात्रों पर बल प्रयोग नहीं हो, उसी रात को बर्बरता से लाठियां बरसती हैं और फिर जब छात्र पुतला दहन करने जाते हैं तो इस बार तो उनके सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे लाठी लेकर छात्रों पर हमला करते हैं। कई छात्र जो हैं वो जाकर एडमिट भी हैं हॉस्पिटल में।
0: वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने जेपीएससी सुधार मंच की भूमिका और उससे जुड़े लोगों पर सवाल उठाए हैं।
2: जेपीएससी जेएसएससी सुधार मंच है क्या? कौन लोग हैं उसमें? कौन लोग उसको संचालित कर रहे हैं? छात्रों की संख्या उसमें कितनी है? पहला राज्य झारखंड ऐसा जहां रिफॉर्म के लिए हाई लेवल कमिटी बना दी गई। अब रिफॉर्म मंच का एक बैनर लगा के आप जो चाहें सो मनमानी करें। भाजपा के इशारे पर चंदा इकट्ठा सब छात्रों से हो रहा है। अब तो छात्र भी रिवोल्ट कर रहे हैं।
0: छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा है कि रांची में छात्रों का 26-27 दिनों से जारी आंदोलन सफल रहा है। पत्रकारों से बातचीत में आज उन्होंने कहा कि छात्रों के हित में आए निर्णय को लागू करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। श्री महतो ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य के सपने देखने वाले युवा व्यवस्था को लेकर परेशान होकर सड़कों पर उतर रहे हैं, इसलिए उनके मामलों का ठोस समाधान होना चाहिए ताकि उनके भविष्य

0: के साथ खिलवाड़ ना हो।
1: जांच अच्छे से हो, रिपोर्ट मजबूती से कोर्ट के समक्ष रखा जाए, इसी को लेकर के हम लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा 2400 जिलों पर कर रहे हैं। 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज, भर्ती व्यवस्था सुधार, यही हम लोग का लक्ष्य।
0: रांची जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आम सभा के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। आयोजकों को अनुमंडल पदाधिकारी की निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्यक्रम की तारीख, समय, मार्ग और संभावित प्रतिभागियों की संख्या की जानकारी देनी होगी। छात्रों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से अनुमति लेकर ही कार्यक्रम आयोजित करने तथा अफवाहों से बचने की अपील की गई है। किसी भी तरह की शिकायत के लिए अबुआ साथी 9430328080 पर संपर्क किया जा सकता है। हजारीबाग के सभी 16 प्रखंडों में आज मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित शिविर में लोगों को कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र ने लोगों से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने मौद्रिक लेन देन केवल बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के माध्यम से करने की सलाह दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कल सावन की अंतिम सोमवारी है। देवघर और दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के अंतिम चरण में अंतिम सोमवारी और मंगलवार को श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। दुमका जिले के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि पिछले 3 सप्ताह के सामूहिक प्रयास से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा, सुरक्षा और सुगम जलार्पण कराया गया है। उन्होंने अधिकारियों को ड्यूटी स्थल पर मुस्तैद रहने और आकस्मिक स्थिति में तत्काल नियंत्रण कक्ष से समन्वय करने का निर्देश दिया।
2: सभी श्रद्धालु जो आने वाले हैं मंडे और ट्यूजडे के लिए, दुमका जिला प्रशासन इनके लिए सारी तैयारी है वो चुस्त रख रही है। उम्मीद यही करते हैं कि सभी श्रद्धालुओं का मनोकामना पूरी हो। निर्देश है कि बेस्ट से बेस्ट यहाँ सुविधा दे सके और सुगम जलार्पण हो सके, इसी के लिए हम लोग तत्पर है।
0: हजारीबाग के बरही में आज पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बाइक रैली निकालकर लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर पुलिस ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की और नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। पुलिस उपाधीक्षक राधा प्रेम किशोर ने कहा कि प्रशासन की पहल और समाज की सहभागिता से नशे के खिलाफ प्रभावी बदलाव लाया जा सकता है।
3: जो ये मुहिम हमारा नशा के खिलाफ है, हम अपने अनुमंडल के सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यदि आपका सहयोग हमें मिलता रहे तो आप ये निश्चित जानिए कि नशा के सौदागरों के खिलाफ जो ये शुरुआत हम लोगों ने की है, इसका एक अंजाम तक हम लोग जरूर देंगे। और वैसे सौदागर सावधान हो जाए, चूंकि हमारी टीम जो है सजगता पूर्वक इस अभियान को आज से जब शुरू की है तो वो निरंतर प्रयासरत।
0: पलामू जिले के चैनपुर थाना परिसर में आज जेल से छूटे आपराधिक मामलों के आरोपितों की थाना परेड कराई गई, जिसमें कुल 117 लोग शामिल हुए। इनमें हत्या के 26, लूट के 15, चोरी के 15, आर्म्स एक्ट के 31 और अन्य मामलों के 28 लोग शामिल थे। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने सभी को कानून का पालन करने और आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की सलाह देते हुए दोबारा अपराध में शामिल पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 25 अगस्त को गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा मध्यवर्ती जिले खूंटी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 26 अगस्त को गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के साथ निकटवर्ती मध्यवर्ती जिलों लोहरदगा और खूंटी में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। विभाग

0: बताया है कि 27 अगस्त को रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह और धनबाद में भारी बारिश का अनुमान है। महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। पूल ई का यह मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील। कहा, वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करना जरूरी। जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन पर सियासत तेज। लाठीचार्ज को लेकर भाजपा और झामुमो ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। बासुकीनाथ में अंतिम सोमवारी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। भीड़ नियंत्रण और सुगम जलार्पण के लिए व्यापक इंतजाम। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का जताया अनुमान। रांची, गुमला, सिमडेगा समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी शबनम प्रवीण का साहिबगंज दौरा हुआ। खाद्य आपूर्ति से संबंधित शिकायतों, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केंद्रों के पूरक पोषण आहार इत्यादि का निरीक्षण एवं साफ सफाई पर समीक्षा किया गया। शबनम प्रवीण ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न और अन्य निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अगर शिकायतें होती हैं तो इसका त्वरित एवं प्रभावी समाधान किया जाए।
2: हमारा जो अभी समीक्षा बैठक हुआ है, मैं फील्ड विजिट की हूँ। फील्ड विजिट में भी मुझे एक स्कूल में लकड़ी पे खाना बनते हुए मैंने पाया, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। और आंगनबाड़ी में जो बच्चों को जो प्रत्येक दिन जो अंडा देने की बात है, तो यहाँ पे बच्चों को महीना में 6-7 दिन ही अंडा दिया जा रहा है। बैठक का मुख्य विषय यही था कि जो भी केस पेंडिंग है, जो शिकायत पेंडिंग है आयोग में, तो वो शिकायत का निवारण जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी जल्द से जल्द कर।
1: आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और जीवन शैली के उत्थान को लेकर जिले में भी विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस वर्ष का थीम आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार में योगदान आधारित रहा। आदिवासी हमेशा से जल, जंगल, जमीन से जुड़े रहे हैं। इनकी जीवन शैली प्रकृति अनुरूप रही है, जिसके वजह से आज प्राकृतिक धरोहर सुरक्षित हैं। साहिबगंज के वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने बताया कि आदिवासी के परंपरा जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाता है।
3: भारत में अनेक प्रांतों में आदिवासी जन रहते हैं, खास करके झारखंड की तो पहचान ही हमारे संथाल, कुंडा, उरांव, हो, बिरोध, पहाड़िया और अन्य कई सारे आदिवासी समाजों से होती है। इनकी परंपरागत नीतियां हैं, ये सब प्रकृति से बहुत जुड़ी हुई हैं। इस वर्ष यानी कि 2026 का जो थीम है विश्व आदिवासी दिवस का, वो है आदिवासी महिलाओं में जो केयर गिविंग महिलाएं होती हैं, जो प्रसव के दौरान या अन्य रोग के दौरान जो उपचार करती हैं, उनकी

0: आइडेंटिफाई करने के लिए इस साल का विश्व आदिवासी दिवस का थीम डिसाइड किया गया।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फसलों का बीमा किया जा रहा है। 31 अगस्त तक किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नजदीकी प्रज्ञा केंद्र, प्रखंड कार्यालयों, एटीएम, बीटीएम से संपर्क कर इसका लाभ ले सकते हैं। जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए किसान गोष्ठी और जागरूकता रथ के माध्यम से जानकारी दिया जा रहा है। किसान अपने फसलों का बीमा 1 रुपए टोकन मनी से करा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, आज भी हमने रथ यात्रा निकाला है किसानों को जानकारी देने के लिए। मात्र 1 रुपए का टोकन मनी है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि भविष्य में अगर हमारा धान अफेक्ट हो वेदर के कारण तो उनको ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े।
1: विगत दिनों गंगा नदी का जल स्तर चेतावनी के निशान को पार कर चुका था, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने बाढ़ संभावित इलाकों का दौरा कर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अभी गंगा नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
3: अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, 7:17 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपकी पसंद कार्यक्रम में श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला। इस गीत को पसंद किया है वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चयबासा से आप हैं भोलाराम मधुर मोहिनी मीरा मधुर मधु लकड़ा नताशा और बेबी। बड़ी बाजार चयबासा से विनोद कुमार पवन और मीना पवन। महुल्डिया मेन रोड सोनवा से नंदकिशोर महतो राधामणि महतो रेवारी बंदनी दीपक संतोष राहुल बिट्टू आयुष गीतेश अन्नू तन्नू डिस्को महतो भाई नंदू महतो गुरुचरण नायक अनुसुईया नायक प्रियंका नायक देवाशीष नायक गुलशन नायक पिनाक पाणी प्रधान तनुश्री प्रधान नीलपाणी प्रधान और नेकपाणी प्रधान। बड़ा निमडी चयबासा से आप हैं तुलसी पथिक मीरा देवी बजरंगी ठाकुर मीतू रंजन राजीव रंजन मौलिक रंजन अमित कुमार सुमित कुमार और अमृत कुमार। इसी गीत को सुनना चाहा है कुचई इचाहतु से भोलाराम लोहदा लुद्री लोहदा श्रुति लोहदा सोमनाथ लोहदा पूर्णिमा लोहदा लालमुनि लोहदा और व्यंजना लोहदा। ग्राम तोंडांगाडी से मुकेश महतो दिलीप महतो विजय महतो सुमन महतो सूरज महतो सुरेंद्र महतो और मुकेश बाबू। जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया।

इस गाने के बाद सुनते हैं पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गीत मुकेश के स्वर में। इस गीत के लिए खत हमें लिखा है शिवाजी चावकर आजिम, छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता आदित्य कुमार और कृषि वास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। अमलाटोला चैबासा से आप हैं गोरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयदेव बीरक और मीका बीरक। इसी गीत को सुनना चाहा है अमजोड़ा पुकरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहनें संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। ग्राम पोंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रोकी महली, कविता महली, हरसमनी महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, संजीव सोरेन, नंदनी, गोपाल महली और एनएस महली। छोटा निमरी चैबासा से आप हैं बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी और रीति कुमार। न्यू कॉलोनी निमडी से आप हैं ठाकुर प्रसाद, रंगीला, निर्मला देवी, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अंश, अंशु, टिंकू और मुन्ना। ग्राम हडीरा से मानता राम सिंह कुंटिया।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

हैं पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले के युगल स्वर में। इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम कुड़ा से पौंडे बॉयपाई, रेशनल बॉयपाई, यशमती बॉयपाई, कश्मीरा बॉयपाई, मीनाक्षी बॉयपाई और तारकेश्वर बहंदा। बड़े बाजार चैबासा से आप हैं मुअज्जम बिहारी, शमीमा खानम, जिम्मी बिट्टू किरण, रोशनी मुस्कान और परी नबीहा। खरसवा पातिसाई से शुक्र नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक। इसी गीत को सुनना चाहा है सोनवा गांव, पोड़ाहाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक और मकरू आचार्य। ग्राम महालीसई से आप हैं बीरबल महाली, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, फूलमणि महाली, शकुंतला महाली, यशोदा महाली, सुमानते महाली और शांति महाली। ग्राम जोजोकुड़मा से मनोज गागरई, बसंती गागरई, सोनाली गागरई, आयशा गागरई, रचना गागरई और जितेंद्र गागराई। आदर्श नगर सरायकेला से आप हैं तनुश्री, बिट्टू, विक्की, किरण, गुलाब, उत्पला, शिवम, सुजाता और आरती।

आपके पसंद कार्यक्रम में श्रोता भाई, अब सुनते हैं सरगम फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। इस गीत को सुनना चाहा है गांव की तासराय किला से राधा कृष्ण गोप, राजेश महतो, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, सुमित गोप, विक्की गोप, सुनीता गोप, गीता गोप, रीता गोप, सुलेखा गोप और आराध्य गोप। खरसवा गांव ढलाई किला से आप हैं लक्ष्मण सोय, आयुष सोय, सोनू हरिजन, गीता सोय, सरिता सोय, सिनेमाई सोय, इभी सोय, तनुजा सोय, राधिका सोय और पुष्पा सोय। इसी गीत को सुनना चाहा है कुचाई बित्री गांव से केपी सोय, दुर्गामती सोय, सरिता सोय, रेशमी सोय, राजकुमारी सोय, विशाल सोय, सन्नी सोय और मुन्ना सोय। ग्राम सूराबेड़ा से बन सिंह सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुखमती सरदार, रमेश, अंशु और बीरू सरदार। चांडिल ग्राम हारोडी से आप हैं तुलसीदास महतो, कल्पना मनोरमा, दीनबंधु महतो, महिनी और साथी। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम गिले लोहर से कोमल बेसरा, बसंती बेसरा, बनमाली बेसरा, सीत कुमारी बेसरा, रमेश बेसरा, अन्नू और पूजा। बड़ा बम्बो सुपैसे से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, देविन बाबू, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला प्रमाणिक, श्यामदेव नायक, पूजा नायक और सीमा। घाटशिला से आप हैं संतोष कुमार भगत, श्रीमती बसंती भगत, सोना रूपा मोनिका चांदनी भगत, दादू भाई आयुष भगत और शिवम भगत।

सरगम फिल्म के इस गाने के बाद श्रोताओं सुनते हैं जंगली फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वरों में। इस गीत को पसंद किया है खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार। पटेल नगर मलोट पंजाब से आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया और बेबी आरजू जजोरिया। ग्राम डोंगरिया मलाजखंड मध्य प्रदेश, मुन्ना पटले, माधुरी पटले, याजना पटले और दीपांशु पटले। इसी गीत को सुनना चाहा है सदाबहार श्रोता संघ ग्राम मोहत जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश, मुशरफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन, तैमूर तड़वी और भैया तड़वी। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह बांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में। इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम पहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण पंचोर चंद्र किरण प्रीति और छाया पंचोर। चार डोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से आप हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, जय कुमार, श्रीमती कुमारी साहू और श्रीमती इंद्राणी माया साहू। स्टेशन रोड बड़ा बम्बू गोपालपुर से ममता प्रामाणिक, नमिता प्रामाणिक, जय कुमार महतो, संतोषी महतो, अंकिता महतो और विजय कुमार महतो। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। इसी गीत को सुनना चाहा है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर और प्रिंस एकांश गवाड़कर। बदरापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर और अर्जुन गवाड़कर और टुक टुक। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी। पाकुड़ झारखंड से आप हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। इसी गीत को सुनना चाहा है सरेकिला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरुमणि मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना और एफएम शिवा मुंडरी। फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, तिवंसी खेड़ा, शालनी खेड़ा, आरवी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार। गोला बाजार बक्सर से आप हैं सदानंद आर्या, अभय

इस गीत के साथ ही आपकी पसंद का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम बेरेडी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची कर्मकर और तन्नो कर्मकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। अलिका डाबवाली से आप हैं बसंत सिंह चौहान, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। औरंगाबाद से राजेश अभले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। इसी गीत को सुनना चाहा है मोहल्ला पतेगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, बीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, अनीतापुरी, ममतापुरी, मेघापुरी, पूजापुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रामा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेशपुरी, विनोदपुरी, पालीपुरी, डीसीपुरी, अरुणपुरी, नेहापुरी, एकतापुरी, शम्मीपुरी, बोधीपुरी, सुनीलपुरी, बीकेपुरी और आरएसपुरी। बागपत यूपी से आप हैं एहसान अली।

जब जब फूल खिले, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। इस गीत के लिए कथा में लिखा है सन्नी इंक्लेब मोहाली से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, नरगोड़ा सीपत, छत्तीसगढ़ से आप हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी गोस्वामी, निशा और तुलसी गोस्वामी, वरुड जहुलका से आप हैं महेंद्र सरकरे, विजया सरकरे और मिलिंद सरकरे। इसी गीत को सुनना चाहा है दुगई सेलू जिला परभणी से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी, नाज मंजिल मेसौल सीतामढ़ी बिहार से आप हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, नवासा अरहान बाबू, नवासी हुमायरा नाज, नवासी सुमायरा नाज, नुसरत जहां नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख।

रजनीगंधा कार्यक्रम में श्रोता भाई अब सुनते हैं जीवन मृत्यु फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। इस गीत को सुनना चाहा है बठेना से बलकरण अंजनी वर्मा और कुमारी ज्योति वर्मा। चटौदा सारा गांव से आप हैं सुजान वर्मा, सुहात्र वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। ग्राम दुर्राबांधा भाठापारा से प्रमोद साहू, दे कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू। इसी गीत को सुनना चाहा है गांव फ्रांसी से राजकुमार डूटी, सज्जी सिंह डूटी और प्रमोद कुमार डूटी। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू। मलुट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, गुरुचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। इसी गीत को सुनना चाहा है राजनंद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी।

जीवन मृत्यु फिल्म के इस गाने के बाद श्रोता सुनते हैं शोर फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर और मन्ना डे की। इस गीत को सुनना चाहा है पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलडाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। इसी गीत को सुनना चाहा है स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। बोरखेड़ा पिपरामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, कुमारी नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहरा और परी मूड़त। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से छत्तीसगढ़ से आप हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं इन श्रोताओं की फरमाइश पर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दोबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से आप हैं आदेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुश्ताबा खान, राव भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। महादेव घाट अमेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तरनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा ददरेंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झवेंद्र कुमार वर्मा। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाडे, ज्योति नरवाडे, आकांक्षा नरवाडे और आकाश कुमार। आप सबने सुनना चाहा है राजकुमार फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रजनीगंधा कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं याराना फिल्म का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में। इस गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राजेश शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय तन्मय, बेबी अनिष्का और राधिका गजबीय। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम पजौनिया जिला जलान उत्तर प्रदेश से सतेंद्र चौंसौलिया, आदर्श, सार्थक अलौकिक और आराध्या चौंसौलिया। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनहट्टी बरेली से विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान। लुधियाना पंजाब से आप हैं अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आतिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डबलुल्ला फकीर और परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से बद्रवली अंसारी, फर्जवली अंसारी और फर्जीवली अंसारी।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं दो कलियां फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। इस गीत के लिए फरमाइशी कथा में लिखा है धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी और मास्टर शानू ध्रुवंशी, ग्राम सुपैसे से इंद्रजीत नाती और मुरारी मोदी, बठिंडा रोड डाबाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। इसी गीत को सुनना चाहा है सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, ग्राम धाडीनादूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप भाटे और अमूल्या बाठे, तुरीटोला चैबासा से आप हैं मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, संगीता देवी, खुशी कुमारी, अंजू देवी, अर्पिता कुमारी, सुमित कुमार लांडो और भोला रजक।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, रजनीगंधा का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:45 हो रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें।

0: होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सज्जित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
5: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, एआई, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
1: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
6: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नित्य गीत की द्वारा, इसके वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
7: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
1: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों

0: पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरंड कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Visakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohan Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector and space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on the National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures.

लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं। ड्यूरिंग

0: at stumps on day one of the second and final test in Colombo. Dhruv Jurel and Saransh Jain were at the crease of the draw of stumps this evening. Devdutt Padikkal continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. He made 117 of 193 balls, while skipper Shubman Gill also scored a half century. Earlier, India won the toss and opted to bat. The visitors clinched the first test by 165 runs and currently lead the two-match series 1-0. India needs to win this match also to move into fourth place in the race for the 2025-27 World Test Championship final. Australia is at the top, followed by South Africa and New Zealand. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh till tomorrow. Meanwhile, parts of the national capital receive light to moderate rainfall. The weather agency predicted cloudy sky with a spell of very light to light rainfall at most places for tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Vishakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohun Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई तहकीक के शोबे में प्राइवेट सेक्टर से अपील की है कि वो इख्तरा से मुताल्लिक आलमी तासुर कायम करें। भारत आज खला का कौमी दिन मना रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बहरी जहाजों की तामीर और बहरी शोबे में खुद इन्हिसारी पर जोर दिया है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR ने वाज़े किया है कि मुल्क में स्वाइन फ्लू के किसी नए जरसूमे की पहचान नहीं हुई है। ICMR ने यकीन दिलाया कि मौजूदा टीके मुअसर हैं। खेलों के ब्रिक्स वज़रा की मीटिंग विशाखापट्टनम में कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुई, जहां खेलों के शोबे में इश्तराक, शमूलियत और बाहमी वक़ार को मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरक एलामिया अपनाया गया। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड 17वीं मरतबा डूरेंट कप जीत लिया है। कोलकाता में खेले गए फाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने रिवायती हरीफ मोहन बगान को शिकस्त दी। और FIH हॉकी आलमी कप में आज रात नीदरलैंड्स में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को पूल ई का ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई तहकीक के शोबे में प्राइवेट सेक्टर से अपील की है कि वो इख्तरा से मुताल्लिक आलमी तासुर कायम करें, ताकि दुनिया भर के लोग ये महसूस करें कि करियर बनाने के लिए भारत जाना चाहिए। जनाब मोदी ने 20 खलाई स्टार्टअप्स के CEOs के और बानी अफराद से मुलाकात के दौरान ये बात कही। आज खला के कौमी दिन के मौके पर जारी की गई इस बातचीत के मुताबिक जनाब मोदी ने खलाई मुहिमात शुरू करने के मामले में दूसरों के मुकाबले भारत की कम लागत को भी नुमाया किया।
2: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: जनाब मोदी ने बातचीत के दौरान खलाई शोबे के स्टार्टअप से अपनी कोशिशों में तसलसल बरकरार रखने और दुनिया भर से होनहार अफराद को रागिब करने के काबिल खलाई शोबे का जामे इको सिस्टम तश्कील देने की अपील की।
2: अपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है, सबसे बड़ी बात है कि

0: आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई, कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
1: इस दौरान खलाई शोबे के पहले भारतीय टेक यूनिकॉर्न स्काई रूट एरोस्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव सर पवन कुमार चंदाना ने खलाई शोबे को खोलने पर जना मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता महीने की 18 तारीख को स्काई रूट एरोस्पेस ने प्राइवेट तौर पर तैयार किया गया भारत का पहला रॉकेट कामयाबी से दागा। इस दौरान आज खला से मुतालिक कौमी दिन मनाया जा रहा है। भारत 23 अगस्त को चांद के कुतुब जनूबी के नजदीक चंद्रयान स्वयं की तारीखी आसान लैंडिंग की याद में हर साल ये दिन मनाता है। इस तारीखी लैंडिंग के जरिए भारत चांद के कुतुब जनूबी के इलाके में पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया था। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खला के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि खला से मुतालिक दरियाफ्त के शोबे में भारत की काबिल जिक्र हसूलियाबियां मुल्क की साइंसी उमदगी इख्तरा के जज्बे और मालूमात के महाज को फरोग देने के मुल्क के जज्बे की अक्कासी करती हैं। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में कहा कि नए आलमी ऑर्डर में भारत अपने खलाई शोबे को लगातार वसत दे रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी खला के कौमी दिन के मौके पर चंद्रयान स्वयं की तारीखी कामयाबी को याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस हसूलियाबी ने भारत को खला का सफर करने वाले दुनिया के सरकर्दा मुल्कों में शामिल कर दिया है। जनाब सिंह ने भारतीय साइंसदानों के काबिल जिक्र तआवुन की सताइश भी की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जंगी जहाज बहरी कश्तियों और दीगर मुतालिका शोबों में खुद इन्हिसारी की जरूरत पर जोर देते हुए इसे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अहम करार दिया। उन्होंने भारत को मुस्तकबिल में जहाजसाजी का मरकज बनाने के मकसद से इस शोबे में रख रखाव से मुतालिक मियारी खिदमात की जरूरत पर जोर दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC और यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL के तकरीबन 3,400 करोड़ रुपए मालियत के 5 प्रोजेक्टों के भूमि पूजन की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि GRSE मुल्क मुस्तकबिल में जहाजसाजी के सिलसिले में कायदाना रोल अदा कर सकती है। वजीर मौसूफ ने यह भी बताया कि GRSE जर्मनी के लिए एक कार्गो जहाज तैयार कर रही है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अंदरूने मुल्क तैयार की जाने वाली दिफाई मसनूआत पर इन्हिसार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मुसल्ला फाज भारत के सरकारी शोबे की दिफाई कंपनियों के जरिए तैयार की गई मसनूआत में ज्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। वजीर दिफा ने आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड के 5 मराकज के भूमि पूजन की तकरीब में शिरकत की। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विकसित भारत 2047 के हुसूल में रियासती हुकूमत के तआवुन के लिए मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की कोशिशों की सताइश भी की। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: वजीर दिफा ने कहा कि दुनिया को दिफाई मसनूआत की बरामदात के लिए मयारात की यकीन दहानी और बरवक्त फराहमी पर भरपूर तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज अब दिफाई जरूरियात के लिए अंदरूने मुल्क तैयार शुदा मसनूआत पर इन्हिसार कर रही हैं। जनाब सिंह ने बताया कि रियासती हुकूमत दाखिली सिक्योरिटी के सिलसिले में भरपूर तआवुन फराहम कर रही है। वजीर दिफा ने उम्मीद जाहिर की कि रियासत नए प्रोजेक्टों के साथ साथ तरक्की के नए दौर के आगाज के लिए इकदाम करेगी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि रियासती हुकूमत ने इन नए प्रोजेक्टों के लिए 11,000 एकड़ जमीन फराहम की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में नवरत्न कंपनी GRSE लिमिटेड ने 100 से ज्यादा बहरी जहाज फराहम किए हैं। भारतीय हुकूमत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए ये प्रोजेक्ट बहरी अफवाज और दीगर दिफाई और बहरी शराकतदारों की बढ़ती हुई जरूरियात पूरी करने में मुआविन होंगे। मगरबी बंगाल के किदरपुर, शालीमार और रायचक और ईशापुर

0: लहात के मामले पर इकट्ठा होने की अपील की गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली में इम्तनाई अहकाम पहले ही नाफिजुल अमल हैं। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड 17वीं मरतबा डूरेंट कप जीत लिया है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आज शाम खेले गए फाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने रिवायती हरीफ मोहन बगान सुपर जॉइंट को 4-1 से शिकस्त दी। ईस्ट बंगाल की जानिब से एडमंड लाल रिंदिका ने सनसनीखेज हैट्रिक लगाई, जिसके बाद डूरेंट कप 22 साल के बाद ईस्ट बंगाल के नाम हो गया। एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप में आज रात भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। भारत के क्वालिफाई करने का इन्हिसार चीन और नीदरलैंड्स के दरमियान होने वाले मैच पर भी होगा। चीन के हारने की सूरत में भारत की राह हमवार हो जाएगी। अगर चीन ये मैच जीत लेता है तो भारत ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई तहकीक के शोबे में प्राइवेट सेक्टर से अपील की है कि वो इख्तरा से मुतालिक आलमी तासुर कायम करें। भारत आज खला का कौमी दिन मना रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बहरी जहाजों की तामीर और बहरी शोबे में खुद इन्हिसारी पर जोर दिया है। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR ने वाज़े किया है कि मुल्क में स्वाइन फ्लू के किसी नए जरसूमे की पहचान नहीं हुई है। ICMR ने यकीन दिलाया कि मौजूदा टीके मुअसर हैं। खेलों के ब्रिक्स वज़रा की मीटिंग विशाखापट्टनम में कामयाबी से अख्तिताम पजीर हुई। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड 17वीं मरतबा डूरेंट कप जीत लिया है। कोलकाता में खेले गए फाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने रवायती हरीफ मोहन बगान को शिकस्त दी। और FIH हॉकी आलमी कप में आज रात नीदरलैंड्स में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को पूल ई का ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: This is Delhi. Please stand by for our next broadcast.
2: Radioscope, the National Science Magazine program.
3: Welcome to the Independence Month special edition of National Science Magazine, Radioscope. In this issue, we celebrate India's remarkable journey from the transformation of our roads and highways to the pioneering strides being made in space exploration by Indians. We also spotlight the relentless scientific pursuit of longer, healthier lives, highlighting the newest breakthroughs in longevity research. We also examine the urgent need to protect our water bodies in observance of World Lake Day, August 27th. Let's embark on this journey together, starting with the editorial.
1: Since gaining independence in 1947, India has made remarkable progress in the field of science and technology, transforming what was largely an agrarian economy into a global hub for innovation and research. And the march continues with every passing day with double the vigor. One of the most notable achievements is the advancement in space technology. The Indian Space Research Organization, ISRO, launched numerous satellites, placed missions to the moon, Chandrayaan, and Mars, Mangalyaan, becoming the first country to land near the moon's south pole. India has also made significant strides in nuclear energy, becoming one of the few nations with both civilian and military nuclear capabilities. Institutions like the Bhabha Atomic Research Center, BARC, have played a key role in this development. In the field of information technology, India emerged as a global IT powerhouse, with cities like Bengaluru becoming major tech hubs. The success of digital initiatives like Aadhaar, which is world's largest biometric ID system, and Digital India showcases India's capabilities in using technology for governance and public services. Not only that, India has developed its own digital payment gateway that is the biggest in the world. Additionally, India has shown leadership in pharmaceuticals and biotechnology, being a major producer of medicines and vaccines. These achievements highlight India's strong foundations in science and technology and its commitment to innovation-driven growth.
3: India's journey in science and technology is a story of constant innovation and achievement. In 2020, a new chapter began when India opened its space sector to private enterprise, transitioning from an exclusive state-run model led by the Indian Space Research Organization to a dynamic

FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयभाषा केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज रहे हैं, आइए अब सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। महफिल के इस कार्यक्रम में पहला गजल सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: महफिल कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मनहर उदास के स्वर में ये गजल।

इस गज़ल के साथ ही महफिल का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। रात के 10:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। सुरों के रंग कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं आदमी और इंसान फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं प्रेम कहानी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वरों में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: सुरों के रंग कार्यक्रम में श्रोता भाई, अब सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में निशान फिल्म का ये गीत।

इस गीत के साथ ही सुरों के रंग का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 11 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को

0: देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अर्ज्ड प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस रिसर्च टू बिल्ड ग्लोबल ऑरा ऑफ इनोवेशन सो दैट पीपल वर्ल्ड वाइड फील दैट इफ दे वांट टू मेक अ करियर दे शुड गो टू इंडिया। Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई, कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
1: Defense Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSE, and Yantra India Limited, worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The Defence Minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The BRICS Sport Ministers meeting concluded at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS Chairship 2026. A key outcome of the meeting has been the proposal to establish a BRICS working group on sports technology to promote cooperation in sports science, artificial intelligence, digital transformation and athlete performance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow today on a two-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economics, Scientific